विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र

0: के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहाँ संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Ashwani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. It focuses on multiple strategic components designed to ensure comprehensive and sustainable connectivity. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Developed as a joint venture between Hindustan Petroleum Corporation Limited and the Government of Rajasthan, the 9 million metric tons per annum greenfield refinery cum petrochemical complex has been established with an investment of over 79,450 crore rupees. Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand. The project is one of the first four approved under the India Semiconductor Mission and has been developed with a total

वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz की प्रभातकालीन प्रसारण सभा में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा HPT में मौजूद है अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक तीतांगजंग एवं तकनीकी अभियंता ताना आतुम और मैं अपनी आवाज के साथ बिंदुंग दिंदो मांच। दोस्तों, वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम भक्ति गीत का। साथ ही अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। सुबह की इस पवित्र और सुहानी बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, समय है हमारा विशेष प्रस्तुति भक्ति गीत का, जहां हम लेकर आते हैं भगवान की महिमा, श्रद्धा और प्रेम से भरे मधुर भजन और भक्ति गीत। इस शुभ प्रभात में जब प्रकृति भी धीरे धीरे जाग रही है।

आइए हम भी अपने मन को पवित्र विचारों और भक्ति रास में भर ले। कुछ पल के लिए रोजमर्रा की चिंताओं को भूलकर भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का भक्ति गीत और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की कृपा आप पर बने रहे, आपका जीवन में आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए।

0: दोस्तों, आज के भक्ति गीत के इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अब आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम गालो भाषा में समाचार, तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के साथ।
1: हे आकाशवाणी ईटानगर तनगा दम रोगम जब एम दगला तेनलो पोलो ग आलो लोपी आरो गालो मेंकेन अबालो के मेलेन जिदा नांगो मारियो मत हिलो ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मु राजस्थान ओके गुजरात लो पुलिक तदा मु राजस्थान लो पुलिक होए एम पुलिक दगला जोधपुर एयरपोर्ट लोके न्यू टर्मिनल बिल्डिंग नामगो आगाम रूब मकोक जिए ओके मु मोदी पाई यूडीएन स्कीम्स गोसिन जोधपुर लो लंच इदाई राजिए एम दाग ओके कुदा मु बलोत्रा राजस्थान लो 10.6 लाख करोड़ मुर्को आरा लोके अदक अदक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगा बसिन फाउंडेशन स्टोन उली लुन गोसिन दिलिक जिए एम दाग एक ना करोड़ मुर्को लोके पेट्रोल केमिकल अर्बन ट्रांसपोर्ट रेलवेज रूट रेन्यूएबल एनर्जी ओके पावर ट्रांसमिशन हेक एक नागा दम ने मोने नाम लगा ब जिलेन तदंग नाक एम दाग फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रमन मु इंडिया ओके फ्रांस देश अंग पेरिस लोक राउंड टेबल ब दूर हिदाकला बिजनेस ग अब हिगिम ने योब इला सिंह का केन रूब इरिक मेन रिग हिरुलाक जुका अमला मेंटो ओके फाइनेंस मिनिस्टर में मेनला फ्रांस नोक बिजनेस मेन अलालना गद्दम देन ओके भारत गिदा होगो आम रूत ओके ओके यदना गो बिजनेस इसका दु दे एक एक ना गद्दम ओके देश पेले होगो आलिक मोलु तो का अमला मेंटो ओगो मु मेंकेन जिताला मेनला गुनु के भारत गुदा हमने अलिब गुलिन हुबा दोख ब एमला गुनु के विकसित भारत 2047 एमला रुला लम नाम गो कादु नाक ओख लगा ब इंडिया ओक फ्रांस के बिजनेस पार्टनरशिप क्विक देन देन अलिब काकेन ब एरिक दुर हिला जुका एमला सिन दिन सि जाब मेंदिरी सितु अरुणाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर गैब्रियल डी वांगसु मलोग लुगो आलो फ्राइडे ओगो बंदरदेव चेक गेट ओके बंदरदेव

पुलिस स्टेशन एमने कागो तागो तु मु अम्ब कागो तागो दाग अलो ओगो इनर लाइन परमिट आईएलपी ग अबा लगाब पुलिस पर्सनल ऑफिशियल ओक आईएलपी इशुइंग अथॉरिटी ग दने दु हिदाकुला आईएलपी लगाब हाई पावर कमिटी गो मोतु ओकम अम्ब कमिटी एम मोदक अलो ओगो मेंतु कमिटी ग दनुनु आईएलपी ग अबा हिगिम ने आजमायम रु माफ का अमला दिन सिजाब मेंगम जिंजि तु ओक याद गो इला यदि सिस्टम ने परफेक्टला दौद इरु तोला का अमला मेंदी रिसी लसिन इतो तानगा नोनो गालो में के नागम हिम आकाशवाणी ईटानगर लोक तपदु जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लिकेन कोयु मु मलोग लुगो आलो फ्राइडे ओगो दिस रु न रिव्यू क बागो नरु डिस्ट्रिक्ट लोक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स इयारोस गद्दम ने दुकुम गतु ओके एक न कबालो कोयु निगम मेंतु डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लोक आकुम ना इयरोस गद्दम ने नुनु इस ग एस आई आर इतु नाम हिगिम ने अजमायम माब अलुब अगरम गरम तोला का अमना दिन सि जाबे मेंगम जिनि तो ओक याद गो पगला यदि स्टेट ग इलेक्टोरल प्रोसेस हिगिम ने अलुब प्रोसेस इकेन दग ब इग मेम रु तोला का अमना सिम मेंगम जिनि तो न्यू दिल्ली बोलोक नेशनल वर्कशॉप ऑफ स्टेट पंचायती राज ओक मिनिस्टर ऑन 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन अमला दिन शुरू ने वर्कशॉप इदाक लो गुग स्टेट ग रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर ओजिंग तासिन मिशिन ये लिख दू लिख गेन मेक अमला मेन कैन अमलो पिदाक ओक वर्कशॉप इदाक ओगो 16 फाइनेंस कमीशन रूरल लोकल बॉडी आरबीएल ग आरा लोक गाइडलाइंस अब हम सिंह या का जागो मोलेंगे एक बार अमदो ओके एक न गाइडलाइंस आरा लो मेंटु याद गो इलाय दे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ग ट्रो लोक सिन आयु उन रिसोर्स सोर्स ओएसआरओ हक एक न अब बागा दम सिन आयु मोबिलाइजेशन हिक पे लगी दू ना के अमला सिन के बा लोगो मेंदुम तू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मु डॉक्टर शिवराज रिटर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एंड ओस्मिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अर्जु दोईमुग रेगुलर वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट काकु होके इनेकुन ग मदवालो तार्स दे ओगो ओके मु अनि न्यूंगोगो ऑफिस लो ये मुग बॉय के याद लोबे 70 इयर्स लोबे दू दग दी ओग्लो बे मु ऑफिस लो दू ले एल पके एमला मेंके नगोम लो जिलिक्तु आईसीसी ओमेन टी 20 वर्ल्ड कप लो इंग्लैंड गद साउथ अफ्रीका अमने हिपक तो 40 रन्स लोक एक्सिन राउंड सेकंड सेमीफाइनल लो मुनु इज अ साउथ अफ्रीका अमने हिपक तो रेकुला फाइनल लो ऑस्ट्रेलिया ग टीम अमने हिका हिकु अगे अलोने एक्सिन आइकॉनिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन लो अमदाग ओके पीपा वर्ल्ड कप लोक कुद हम्ब इदाग स्पेन गद ऑस्ट्रेलिया अमने 3-0 लोक तुपक तोरेकुला मुनु राउंड 32 लो आला अलिब कलिका ओके मुनु इज अ राउंड 16 लगा बसिन पोर्तुगल मायोम ने क्रोशिया टीम एम ने तुका हिए एम दाग ओके बेलगाम यूनाइटेड स्टेट ओके इंग्लैंड गद राउंड 16 लगा ब कलिए कली नाम लगा ब अल्लो ने कली एडवांस का एम दो ओके इंग्लैंड मेक्सिको टीम एम ने होके आठ तन लोन अलोलो राउंड 16 लगा बुका हित तदाक ओक बेलगम कुद यूनाइटेड स्टेट टीम ने तुका ही एक्सिन राउंड 16 लगा बक फ्रांस नॉर्वे कनाडा मोरक्को ब्राजील ओक पुर्गाय गद राउंड 16 लो अलिब क्वालिफाइड गेक नाम के अमला मेंके नाम लो पैदा के तन गद हिर ग गलो मेंके अगम अगम तनगदम लकुद आकाशवाणी ईटानगर पहले लोग रोगाम जा बे कुमरी सी लक्का जुगुन हिरग आरोगो गालो नीतम पोनु में नाम लोग ताला जो तसो होपी बे का जुगुन याप अते ओकमुग अजेंगत ग नीतम पोनु में नाम को ताला जो

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम गालो भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं हमेशा दिल से दिल तक। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम दोस्तों सुबह सवेरे में। मैं हूं आपकी RJ मंच, और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे योगा और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि योगा एंड मेंटल हेल्थ। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस सुबह सवेरे की इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही प्यारा सा गीत शेयर करना चाहती हूँ। चलिए सुनते हैं दोस्तों, दिल तो बच्चा है जी से अभी कुछ दिनों से।

दोस्तों, आज के युग में जब जिंदगी बहुत तेज रफ्तार से चल रही है, हर व्यक्ति किसी न किसी तरह के दबाव का सामना कर रहा है। चाहे विद्यार्थी हो जो परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, नौकरी करने वाले लोग हो जो डेडलाइंस और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं, या घर संभालने वाले लोग जो रोज की अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं। हर किसी के जीवन में तनाव किसी न किसी रूप में मौजूद है। तनाव अगर सीमित हो तो कभी कभी हमें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब यही तनाव लगातार बना रहे तो इसका प्रभाव हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। नींद कम आना, चिड़चिड़ापन, थकान, ध्यान न लगना और हर समय चिंता महसूस करना, ये सब उसके सामान्य लक्षण है, हो सकते हैं। ऐसे ऐसे में दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा सरल और प्राकृतिक उपाय है जो हमें इस तनाव से निपटने में मदद कर सके? तो इसका एक प्रभावी उत्तर है योगा। दोस्तों, योगा केवल शरीर को मोड़ने या कठिन आसन करने का नाम नहीं है, अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन योगा का अर्थ है जोड़ना, अपने शरीर, मन और सांस के बीच सामन्वय स्थापित करना। जब ये तीनों एक साथ संतुलित होते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में शांति और स्थिरता का अनुभव बढ़ता है। सुबह का शांत वातावरण, ताजी हवा और कुछ मिनट योगा के लिए निकालना पूरे दिन को बदल सकता है। सिर्फ 15 या 20 मिनट का नियमित अभ्यास भी मन को शांत करने और दिन भर ऊर्जा बनाए रखने में सहायक हो सकता है। योगा में सांस का बहुत महत्व है। अक्सर हम दिन भर भाग दौड़ में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें अपनी सांस की गति का भी एहसास नहीं होता। लेकिन जब हम धीरे धीरे और गहरी सांस लेते हैं तो शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और मन को शांत होने का अवसर भी मिलता है। इसीलिए प्राणायाम को योगा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। अनुलोम विलोम, ब्राह्मी और गहरी सांस लेने जैसे सरल अभ्यास मन को शांत करने और तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं। इनका नियमित अभ्यास ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी बढ़ा सकता है। दोस्तों, आगे हम और बात करेंगे योगा और योग के बेहतरीन कार्य पर, लेकिन इस बीच में चलिए आपको सुनाते हैं एक गीत। दोस्तों, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ फिल्म झूम बराबर झूम का ये प्यारा सा गीत, बोल ना हल्के हल्के, जिसके निर्देशक है शंकर एहसान लोय। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये गीत पसंद आएगा।

0: ये देखो ताजमहल,
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
0: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है। हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत,

दोस्तों, हम बात कर रहे थे योगा और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, और हमने बात किया प्राणायाम और गहरी सांस अनुलोम विलोम के बारे में। योगा का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान यानी मेडिटेशन। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है मन को पूरी तरह खाली कर देना। वास्तव में ऐसा नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को देखना, उन्हें समझना और धीरे धीरे अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना। जब हम कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तब धीरे धीरे मन की बेचैनी कम होने लगती है। इससे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आ सकता है, याददाश्त बेहतर हो सकती है और रोजमर्रा की परिस्थितियों का सामना अधिक संतुलन के साथ किया जा सकता है। जब हम कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तब धीरे धीरे मन की बेचैनी कम होने लगती है। इससे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आ सकता है। दोस्तों, आजकल मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और लगातार स्क्रीन के सामने बिताया गया समय भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। हम लगातार नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और जानकारियों से घिरे रहते हैं। इसका प्रभाव हमारे ध्यान, नींद और मन की शांति पर पड़ सकता है। योगा हमें कुछ समय के लिए डिजिटल दुनिया से अलग होकर अपने आप से जुड़ने का अवसर देता है। जब हम योगा करते हैं, तब हमारा ध्यान सिर्फ अपनी सांस, अपनी मुद्रा और अपनी वर्तमान स्थिति पर होता है। इसी वजह से इसे कई लोग एक प्राकृतिक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक भी मानते हैं। ये भी याद रखना जरूरी है कि योगा किसी प्रतियोगिता का नाम नहीं है। इसमें किसी दूसरे से बेहतर दिखना या कठिन से कठिन आसन करना उद्देश्य नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने शरीर की सीमाओं को समझना और बिना किसी जल्दबाजी के नियमित अभ्यास करना। अगर आप पहली बार योगा शुरू कर रहे हैं, तो सरल स्ट्रेचिंग, हल्का व्यायाम और आसान प्राणायाम से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे शरीर स्वयं अधिक लचीला और मजबूत होता चला जाता है। किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या को या चोट की स्थिति में योगा प्रशिक्षक या चिकित्सक की सलाह लेना उचित रहेगा। प्रिय श्रोताओं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। अगर कभी किसी व्यक्ति को लगातार उदासी, अत्यधिक चिंता या रोजमर्रा की जिंदगी

संभालने में कठिनाई महसूस हो तो योगा एक सहायक आदत हो सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरे की पूरक हो सकते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सेहत किसी एक दिन का लक्ष्य नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों का परिणाम है। रोज कुछ मिनट योगा, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच मिलकर एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की बुनियाद रखते हैं। तो आइए आज से ही एक छोटा सा संकल्प ले, हर दिन अपने लिए कम से कम 20 मिनट निकालें, अपनी सांस को महसूस करें, अपने मन को शांत करें और अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि जब मन स्वस्थ होता है तब जीवन की हर चुनौती का सामना अधिक हिम्मत और विश्वास के साथ किया जा सकता है। इसी सुंदर संदेश के साथ दोस्तों, हमारा आज का ये सुबह सवेरे का कार्यक्रम बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और योग को अपने जीवन का एक नियमित हिस्सा बनाए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी सुबह सवेरे का कार्यक्रम। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम आपातानी भाषा में समाचार। तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम बात करते हैं हमेशा दिल से दिल तक।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

47 mi mawodo pa malanja mi invest mado pa lunya bne halalo kola mo lobala india la france ni ano henjasla nejalo mado hmi mabasu do pa global ai ecosystem meter ayapa mchala mudupa mo lola saka partnership se niti opportunities mi bido hala harapa ai digital infrastructure ho aline generation technologies me hara henje do kupa halalu ko do agriculture minister gabriel diwang shubyo bandodeva checket ho bandodeva police station saka ani ho kaka hala ane hala wangso mo high power committee ka chairperson halalu kola so kaka hala ka inko ho police personnel ho ilp ising authorities ka officer saka tami kapasala luru senyala mene halalu kola mo lobala ilp me ka मुलाम दला कम ये हो इचुचे आई आर एल तर ये दो हो पा सिमी इचे तलास दो पा तरज किंदो हलालु ने लालु को दो सोशल मीडिया हो पोस्ट मिला मिनिस्टर मोलुला उरा हो नेता पा नाम न्या दो ने है का आता मिटर आया पा काला का कासुने हो अनो खनम पा ये दो सिमी मुलाम चावला आई एल पी सिस्टम मलामी सिमी आया या पा मला मुलेला दो को दा आया किंदो हलालु ने लालु को दो हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री रिटायर प्रोफेसर डॉक्टर शिवराज में इंडिया का प्रेसिडेंट हु राजीव गांधी यूनिवर्सिटी दोईमुख का रेगुलर वाइस चांसलर पा अपॉइंटमेंट हलालु कोला सका अपॉइंटमेंट में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री हलु कोला कोलोतार से अलोहो लारेला मने हलालु कोला सका अपॉइंटमेंट मसने में इन्हें कुन अन्यान्यान्य होकला लुसला दो तो कुहला डॉक्टर सेवराज में अन्यान्यांगो पा अपॉइंटमेंट मला हो मकोडा मो कन्यांग कानु खंगे ले पा ने बोन अन्य बे या पम्यो दु आचे ने हिमे अत केंदो हला डिफेंस सेक्रेटरी सीरिया वाडवाज नोटिफिकेशन में बिलिनला लुकोदो हला लुकोदो ता सी आकाशवाणी ईटानगर जीरो होकला तापाला दो Rural Development and Panchayati Raj ka Minister Ojing Dasing Bilyo New Delhi Hoka State Panchayati Raj Ministers ka 16 Finance Commission Recommendation Mika Mukoho Abo Mola Mane Halalu Kola Saka Mukoho Molo Rural Local Body Grants Me Natampa Pe Ano Ayadopa Molo La Muchine Hemilu Sula Ho Panchayati Raj Institution Me Natampa Pe Atoka Tukoyana Mugomi Ayamuchabudola अदंपा दो दो पा मकिंदो ने हे मेलो कोसला मिनिस्टर हलुला पंचायत हुसु के सिमी संजर पा कागला किंसु दो ने हला लुबने ला लुको दो सुरो कतन पुलो कोसना हम कने

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आप पता नहीं श्रोताओं का कार्यक्रम आप पता नहीं भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों अब वक्त हो चला है कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट प्रोग्राम का। दोस्तों इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से दिल दी नजर। इस गीत को गाया है शान, प्रिया, नीरज और शजनीन ने। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इंफोटेनमेंट का ये कार्यक्रम। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। सबसे पहली खबर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से। दोनों हिल स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी यानी आरजीयू को नया नियमित वाइस चांसलर मिल गया है। हैदराबाद की ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर शिवराज को आरजीयू का नया वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का शिक्षण अनुभव रखने वाले डॉक्टर शिवराज 5 वर्ष के लिए या 70 वर्ष की आयु तक इस पद पर सेवा देंगे। इस नियुक्ति के साथ ही विश्वविद्यालय में लगभग 2 वर्ष से चल रही नियमित नेतृत्व की कमी समाप्त हो गई है। इस फैसले का ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन यानी आपसू ने स्वागत किया। संगठन का कहना है कि आरजीयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए एक नियमित वाइस चांसलर बहुत आवश्यक है ताकि शैक्षणिक और प्रशासनिक फैसले प्रभावी रूप से लिए जा सके। साथ ही आपसू ने अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट के लिए भी जल्द से जल्द एक नियमित वाइस चांसलर नियुक्त करने की मांग दोहराई है। संगठन का कहना है कि फरवरी से ये पद खाली है और नए शैक्षणिक सत्र से पहले ही इस पद को भरना जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों रोजगार और आरक्षण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की। अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट यानी AFTF ने सरकारी भर्तियों में मौजूदा 80-20 रिजर्वेशन रेशियो को समाप्त करते हुए अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब या APST समुदाय के लिए 100% आरक्षण की मांग की है। ईटानगर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए AFTF के अध्यक्ष तादाक नालो ने घोषणा की कि इस मांग को लेकर 11 जुलाई को आकाशदीप से IG पार्क तक एक शांतिपूर्ण पद यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने सभी छात्र संगठनों, सामुदायिक संगठनों, राजनीतिक दलों और नागरिकों से इस मार्च में भाग लेने की अपील की। AFTF का आरोप है कि कुछ भर्ती प्रक्रियाओं में वर्तमान रिजर्वेशन पॉलिसी का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा। संगठन ने राज्य सरकार से इस मामले को गंभीरता से देखने और उचित कदम उठाने की मांग की है। और दोस्तों अब सुनते हैं एक प्रेरणादायक धार्मिक और सांस्कृतिक खबर। वेस्ट कामेंग जिला के बोमदिला में ग्रैंड बुद्धिस्ट धर्म प्रोसेशन का भव्य स्वागत किया गया। यह यात्रा हिज होलीनेस 14th दलाई लामा के 90th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे हैं। ईयर ऑफ कंपैशन का एक हिस्सा है। मोन्यूल शेराब सांगपो सोसाइटी द्वारा आयोजित इस धर्म यात्रा का उद्देश्य दया, शांति, पर्यावरण संरक्षण और विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाना है। यात्रा लगियाला मोनास्ट्री से शुरू हुई है और कलकतांग रूपा बोमदिला दिरांग सेला जांग लुमला और जेमितांग होते हुए 12 जुलाई को तवांग में समाप्त होगी। इस दौरान हर पड़ाव पर श्रद्धालु हिज होलीनेस दलाई लामा के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और मानवता के मार्गदर्शन के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों हम समाप्त होता है हमारा आज का ये स्थानीय समाचार बुलेटिन। चलिए दोस्तों मॉर्निंग इंफोटेनमेंट के इस कार्यक्रम में अब आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। सुनेंगे फिल्म 3 इडियट से बहती हवा सा था वो। आशा करते हैं दोस्तों कि आप इस गीत का आनंद लेंगे।

दोस्तों, वक्त है आज के इतिहास सेगमेंट का। आइए जानते हैं कि 4 जुलाई के दिन इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी।

से पहले बात साल 1776 की। इसी दिन अमेरिका की सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को अपनाया था। इसी के साथ अमेरिकन कॉलोनीज ने ग्रेट ब्रिटेन से अपनी आज़ादी का औपचारिक ऐलान किया। आज भी 4 जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे के रूप में बड़े उत्साह से के साथ मनाया जाता है। 1802 में इसी दिन यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी, जिसे वेस्ट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, न्यूयॉर्क में आधिकारिक रूप से शुरू हुई। आज ये दुनिया की प्रसिद्ध सैनिक प्रशिक्षण संस्थाओं में से एक मानी जाती है। 1826 में 4 जुलाई के दिन इतिहास का एक अनोखा संयोग देखने को मिला। अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स और तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन दोनों का निधन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के 50 साल पूरे होने के दिन हुआ। भारत के लिए भी 4 जुलाई एक महत्वपूर्ण तिथि है। 1902 में इसी दिन महान दार्शनिक आध्यात्मिक गुरु और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का कोलकाता में देहांत हुआ था। उनके विचार आज भी देश और दुनिया के लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। और 1946 में इसी दिन फिलीपींस को यूनाइटेड स्टेट्स से पूरी आज़ादी मिली और वह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो दोस्तों, ये थे 4 जुलाई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पल जिन्होंने दुनिया की दिशा और इतिहास दोनों को प्रभावित किया। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ, जहां हम बात करते हैं हमेशा दोस्तों दिल से दिल तक। अब दोस्तों आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम, तागिन भाषा में समाचार। तो बने रहिए हमारे साथ।

अरुणाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर गैब्रियल डेनवांग वांगसु मयो बंदर दो अच्छे गेट ओके बंदर दो पुलिस स्टेशन का अंकर लगा कर गए को बेला मिफालें तो को सो इनर लाइन परमिट आईएलपी पहले लो हाई लेवल पावर कमिटी के मिलिन को ने चेयरमैन बकरे ने आईएलपी इशुइंग ऑफिसर्स और पुलिस पर्सनल का नोपाम को नोपाम गेन को बोला मिफा दुखो सो दो सके ने आईएलपी सम अलरोंग बे तेदर का पागे कला जिलिन तक कला मिफा लें दुखो अरुणाचल प्रदेश लो जॉइंट इलेक्टोरल ऑफिसर लीकेन कोयुग अरालो स्टेट लो ईआरओस नाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ददंग अबे पाकु नाम गे दोंग पाम गुनि दोंग पाम गेन खुबेला मे फादो खु सो गे दोंग पाम सु एस आई आर एनुमेरेशन फॉर्म्स गा लाला नि मनंग जिस गेला अल रोंग ब पिलप मोगि खुला इलेक्टोरल रोल्स गा अल रोंग ब मलिन तकेला मे फादो खु सो स्टेट लो अपडेटेड इलेक्टोरल फोर्सेस गा मलेन मोदकुब मनंगनो दरकल बरिबाम तकेला बिफालेंदुकु स्टेट लो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर ओजिंग तासिंग नेशनल वर्कशॉप ऑफ स्टेट पंचायती राज मिनिस्टर्स देदंगा मयो न्यू दिल्ली लो 16 फाइनेंस कमीशन गे रिकमेंडेशन दोंगपांगा दोंगवामगेन खुबेला मिफादुकु President of India Loke Osmania University Hyderabad lo retired kuna chemistry fellow professor badinda Dr. Sivaraj ni Rajiv Gandhi University lo regular chancellor gobe malin gain khubela me palindu khu so ga institution nga ministry of education te de to ministry of education ga department of higher education lok sekena notification nga appointment kunam notification nga jilin kunam nga kela me palen doku icc women's t20 world cup lo england nga south africa nga पोतिरान लो का यागन्य को बोला मैं फाल लिंदो को सो फाइनल लो चालें दुकुला इंग्लैंड गा ऑस्ट्रेलिया गा आई नगर संडे अलोनी आइकॉनिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लो फाइनल गा लिखुत गा दुकुला मैं फादर दुको सरोगे तागिन गांबा यूनियन बिंतापसंका हर्बो

मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। अभी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम तागिन भाषा में समाचार। चलिए अब वक्त हो चला है कार्यक्रम सदाबहार का। दोस्तों, सदाबहार के इस कार्यक्रम में आज सबसे पहले मैं आपके साथ एक गीत शेयर करना चाहती हूँ। सुनेंगे दोस्तों फिल्म विकसित से एक तारा।

दोस्तों, सदाबहार के इस कार्यक्रम में चलिए आज बात करते हैं आज के मौसम का हाल। आज ईटानगर और आसपास के इलाकों में आसमान ज्यादातर बादलों से घिरा रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस और रात को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिन भर गर्मी और उमस का एहसास रहेगा। हल्की बारिश की संभावना भी बनी रहेगी, जबकि रात के समय कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। फिलहाल तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हवा पूर्व उत्तर दिशा से हल्की रफ्तार से चल रही है और हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी बेहद अच्छी बनी हुई है। इसीलिए सुबह की सैर या हल्का फुल्का व्यायाम करने के लिए मौसम अनुकूल है। हाँ, अगर आप दिन के समय बाहर कोई कठिन शारीरिक काम करने जा रहे हैं तो गर्मी और उमस को देखते हुए पर्याप्त पानी पीते रहें और जरूरी सावधानी बरतें। अगले कुछ दिनों तक बारिश और गरज के साथ बादलों का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे हमारे सदाबहार के इस कार्यक्रम में प्रकृति के बारे में, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं एक और गीत। हम सुनेंगे फिल्म रंग दे बसंती से लुका छुपी आमिर खान का ये फिल्म है। दोस्तों, लता मंगेशकर और ए आर रहमान की आवाज में, चलिए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, सदाबहार में आगे हमने बात किया था आज के मौसम का हाल। चलिए अब बात करते हैं प्रकृति की बात। दोस्तों, बारिश का मौसम सिर्फ ठंडक ही नहीं लाता बल्कि हमें प्रकृति के और करीब आने का मौका भी देता है। हरी भरी पहाड़ियाँ, नदियाँ, जंगले और साफ हवा हमारे अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान है। इन्हें सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है, जैसे कि प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, कूड़ा इधर उधर ना फेंकना, पेड़ पौधों की देखभाल करना और जितना हो सके पानी की बचत करना। बारिश के पानी को संभाल कर रखना यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना भी भविष्य के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। ये भी याद रखिए कि जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होता, ये हमारे जल स्रोता, वन्य जीवन और जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, तब प्रकृति भी हमें स्वस्थ जीवन, साफ हवा और बेहतर भविष्य का उपहार देती है। तो आज का संदेश बस इतना सा है, प्रकृति से प्यार कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि एक हरा भरा और स्वच्छ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सदाबहार के इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के साथ समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज़ एवं

0: मॉर्निंग न्यूज के लिए, जिसके बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र के साथ नॉर्थ ईस्ट न्यूज के लिए। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक, और मैं हूं आपकी आरजे मांज। दोस्तों, समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज एवं नॉर्थ ईस्ट न्यूज के बाद हम मिलेंगे 8:40 पर हेलो ईटानगर के कार्यक्रम में। तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम बात करते हैं हमेशा दिल से दिल तक।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnic.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
4: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा

0: करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहां निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्ट्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1000

0: 500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने

0: की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें। मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती। बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान एंड गुजरात टुडे टू इनॉग्रेट कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन बालोतरा। Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
3: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment, employment and industrial growth in the state's western districts. The Rajasthan refinery project will also boost sectors such as MSMEs, packaging, textiles, auto components and agri-film, providing a fresh boost to the state's economy. Built on Rajasthan's challenging desert terrain, the project is a remarkable feat of engineering. The second phase of Jaipur Metro Rail project will develop the north South corridor, significantly enhancing the city's multimodal connectivity. The corridor will integrate metro services with the airport, railway station and bus terminal, providing seamless and more convenient public transport for citizens. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jodhpur.
2: Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand in Ahmedabad. The project is one of the first four approved under the India Semiconductor Mission and has been developed

नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों वक्त हो चला है कार्यक्रम हेलो ईटानगर का। इससे पहले आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। मैं हूं आपकी आरजे मांच, और आज हम बात करने वाले हैं एक सपना, एक संकल्प, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के नाम। इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों आज के इस विशेष कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं युवाओं की, जो अपनी जिंदगी के कई अनमोल साल एक ऐसे सपने को समर्पित कर देते हैं, जिसका मकसद सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाना नहीं, बल्कि देश और समाज की सेवा करना होता है। हमारा आज का विषय है एक सपना, एक संकल्प, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के नाम। दोस्तों हर साल लाखों युवा यूपीएससी, एपीपीएसएससी और अन्य सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी शुरू करते हैं। इनमें से बहुत कम लोग अंतिम सूची तक पहुंच पाते हैं, लेकिन एक बात जो सभी एस्पिरेंट्स को खास बनाती है वो है उनका सपना, एक जिम्मेदार और ईमानदार लोक सेवक बनने का सपना। सिविल सर्विसेज को अक्सर सिर्फ एक करियर के रूप में देखा जाता है, लेकिन असल में ये उससे कई बढ़कर है। एक सिविल सर्वेंट सिर्फ फाइल्स या ऑफिसेज तक सीमित नहीं होता, वो गांव और शहरों के बीच पुल बनता है। वो सरकारी योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है। वो संकट के समय लोगों के साथ खड़ा होता है और समाज में बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। इसीलिए जो युवा इस रास्ते को चुनते हैं, उनका सपना सिर्फ व्यक्तिगत सफलता, पर्सनल सक्सेस का नहीं, बल्कि जन सेवा का भी होता है। और इसी सोच को दोस्तों हम सलाम करते हैं। लेकिन इस सपने के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। दिन के कई कई घंटे पढ़ाई, बार बार रिवीजन, अनसर्टेनिटी, रिजल्ट का इंतजार और कभी कभी बार बार असफलता का सामना। हर अटेम्प्ट के साथ उम्मीद भी जुड़ी होती है और चिंता भी। फिर भी अगले दिन वही किताब खोलकर दोबारा शुरू कर देना, यही एक एस्पिरेंट की असली ताकत है। कई बार उनकी दोस्त अपनी नौकरियों में आगे बढ़ जाते हैं, किसी की शादी हो जाती है, कोई अपना करियर बना लेता है, और एक एस्पिरेंट अभी भी लाइब्रेरी के किसी शांत कोने में बैठा अपने सपने को जिंदा रखता है। ये आसान नहीं। कभी लोग अनजाने में पूछ लेते हैं, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, या कितने अटेम्प्ट्स और दोगे। शायद ये सिर्फ एक सवाल हो, लेकिन कई बार ये किसी के मन पर बोझ बन जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में, परिवार में या दोस्तों के बीच कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो उससे सिर्फ रिजल्ट से मत मापिए। उसकी मेहनत को देखिए, उसके धैर्य को देखिए, धैर्य को समझिए और उसके सपने का सम्मान कीजिए। हर एस्पिरेंट को सिर्फ किताबों की नहीं, बल्कि अपनों के भरोसे की भी जरूरत होती है। कभी कभी एक छोटा सा वाक्य, जैसे हम तुम्हारे साथ हैं, उनकी हिम्मत को फिर से मजबूत बना देता है। दोस्तों आगे हम और बात करेंगे, लेकिन उस बीच मैं एक सॉन्ग, एक गीत डेडिकेट करना चाहती हूँ हमारे उन लाखों एस्पिरेंट्स को, जो अपने सपनों को अभी तक कायम रखे हैं। दोस्तों हम सुनेंगे फिल्म संजू का कर हर मैदान फतेह, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल ने। मैं बहुत आशा के साथ ये इस गीत को प्ले कर रही हूँ कि जो सारे एस्पिरेंट्स हमें सुन रहे हैं, वो इस गीत को सुने और हौसला ले और अपने आप पर भरोसा करे कि वो एक न एक दिन
इस मैदान को भी फतेह जरूर करेंगे।

जो हमारे एस्पिरेंट्स हमें सुन रहे हैं उनसे भी एक बात मैं कहना चाहूंगी, आप जो रास्ता चुने हुए हैं वो कठिन जरूर है लेकिन बहुत ही सम्मानजनक भी है। देश की सेवा करने का संकल्प हर किसी के मन में नहीं आता, ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। इसीलिए आपकी मेहनत और आपका समर्पण अपने आप में प्रशंसा के योग्य है। हाँ, सिलेक्शन जरूर महत्वपूर्ण है लेकिन उससे पहले भी आप रोज एक चीज जीत रहे होते हैं, अपनी इच्छा शक्ति, अपना अनुशासन और अपने लक्ष्य के प्रति अपनी निष्ठा। अगर कभी थकान महसूस हो, अगर कभी मन उदास हो तो अपने जज्बात को छुपाइए मत। अपने परिवार, किसी दोस्त, गुरु या भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। जरूरत महसूस हो तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह लेना भी बिल्कुल स्वाभाविक और समझदारी भरा कदम है। मजबूत वही होता है जो जरूरत पड़ने पर सहारा लेना भी जानता है। याद रखिए, एक एग्जाम आपकी पूरी पहचान नहीं होती, आपकी ईमानदारी, आपकी संवेदनशीलता और समाज के प्रति आपका नजरिया ही आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। और आखिरकार देश को सिर्फ एक अच्छे ऑफिसर ही नहीं, अच्छे इंसानों की भी जरूरत होती है। अंत में हम देश के हर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। चाहे आप दिल्ली की किसी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, ईटानगर, पासीघाट, तवांग, जीरो, तेजू या अरुणाचल के किसी दूर दराज गांव से अपना सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, याद रखिए आपकी मेहनत का सम्मान किया जाता है। आपके सपने सिर्फ आपके नहीं बल्कि एक बेहतर समाज और एक मजबूत भारत का सपना भी है। अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और कभी ये मत भूलिए कि जन सेवा का भाव ही सिविल सर्विसेज की सबसे बड़ी पहचान है। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों, हमारा हेलो ईटानगर का कार्यक्रम आज के लिए बस इतना ही। सभी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका समर्पण, आपका संघर्ष और देश सेवा का आपका संकल्प हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, चलिए हेलो ईटानगर के इस कार्यक्रम का अंत करते हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग क्रिंज सा सॉन्ग शायद, लेकिन हर एस्पिरेंट का सपना है कि किसी दिन वो इस गीत के साथ अपना भी वीडियो डाले, वो इसी गीत के साथ इंस्टाग्राम पर छा जाए, ऑल इंडिया रैंक में आ जाए। और दोस्तों, इसीलिए चाहे शायद कई लोगों के लिए इंस्टाग्राम में स्पेशली सोशल मीडिया पे आजकल ये गीत लोग कोट करते हैं, इट्स क्रिंज, बट देन अपना सपना पूरा आप जब करोगे तो ये गीत आप जरूर बजाइएगा। और इसीलिए दोस्तों, ये गीत मैं आप लोगों के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड ये गीत प्ले करना चाहती हूँ। चाहे आप इस सिविल सर्विसेज में रैंक लाते हैं या नहीं लाते हैं, क्लियर करते हैं या नहीं क्लियर कर पाते हैं, तब भी दोस्तों आपका जो मेहनत है उसके लिए ही सही, ये गीत आपके लिए डेडिकेटेड है।

तो डियर एस्पिरेंट्स, रुक डरना तू और रुकना तू, अपने राह पर चलते रहना। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। आज का दोस्तों ये सफर हम समर्पित कर रहे हैं उस आवाज को जिसने 1990s के दशक में प्यार, दोस्ती, जुदाई और जिंदगी के हर एहसास को अपनी सुरीली गायकी से अमर बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर प्लेबैक सिंगर कुमार सानू की। दोस्तों, कुछ आवाजें सिर्फ गाने नहीं गाती बल्कि यादें बना देती है। कुमार सानू की आवाज भी उन्हीं में से एक है। उनकी मधुर, नरम और दिल को छू लेने वाली गायकी ने लाखों नहीं करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। 1990s का दौर हिंदी फिल्म संगीत का एक सुनहरा युग माना जाता है और उस युग की बात हो और कुमार सानू का जिक्र ना हो तो तस्वीर अधूरी सी लगती है। चाहे वो पहला प्यार हो, किसी अपने से बिछड़ने का दर्द हो या जिंदगी के खूबसूरत लम्हों की मुस्कान, हर जज्बात को उन्होंने अपनी आवाज से एक नई पहचान दी। फिल्म आशिकी से शुरू हुआ उनका सफर देखते ही देखते हर घर तक पहुंच गया। इसके बाद साजन, दीवाना, बाजीगर, 1942 अ लव स्टोरी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी, परदेश, कुछ कुछ होता है और अनेक फिल्मों के गीत आज भी उतने ही मोहब्बत से सुने जाते हैं जितने उनके रिलीज के समय सुने जाते थे। कुमार सानू की एक और खास बात ये रही कि उन्होंने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया और लगभग हर बड़े फिल्म सितारे के लिए अपनी आवाज दी। उनकी गायकी में एक ऐसी सादगी और मिठास थी जो सीधा दिल तक पहुंच जाती थी। उनके रोमांटिक गीत आज भी हर जनरेशन के पसंदीदा गानों की लिस्ट में शामिल होती है। उनकी उपलब्धियां भी किसी से छुपी नहीं है। लगातार 5 वर्ष तक फिल्म फेयर अवार्ड जीतना हो, एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करके गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो या भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित होना, कुमार सानू ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में एक अनोखा इतिहास रच दिया। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अवार्ड्स या रिकॉर्ड्स नहीं बल्कि वो प्यार है जो उन्हें अपने श्रोताओं से मिला, अपने फैंस से मिले। आज भी जब उनका कोई गीत रेडियो पर बजता है तो ना जाने कितनी यादें ताजा हो जाती है। किसी को अपना कॉलेज याद आ जाता है, किसी को पहली मोहब्बत, तो किसी को जिंदगी के हसीन पल जो वक्त के साथ कहीं पीछे छूट गए। दोस्तों, संगीत की खूबसूरती ही यही है कि वो वक्त की सीमाओं में नहीं बढ़ता, नहीं बनता है। अच्छा संगीत हमेशा नया लगता है और कुमार सानू के गीत इस बात का जीता जागता उदाहरण है। उनकी आवाज ने 3 से ज्यादा दशकों तक संगीत प्रेमियों के दिलों को छुआ है और आज भी वही जादू बरकरार है। तो तैयार हो जाइए एक याद उभरे

सुरों के साझे, सुरों से साझे और दिल को छू लेने वाले संगीत में सफर के लिए। अगले कुछ समय तक दोस्तों हम लेकर आ रहे हैं कुमार सानू के सदाबहार और सुपरहिट गीतों का एक नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले। अपनी यादों को ताज़ा कीजिए, सुरों के इस जादू में खो जाइए और हर गीत के साथ महसूस कीजिए उस दौर की खुशबू जिसने हिंदी फिल्म संगीत को एक नई पहचान दी। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं कुमार सानू स्पेशल नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले हमारे फिल्मी गपशप के इस कार्यक्रम में। सुनिए, गुनगुनाइए और सुरों से इस खूबसूरत सफर का आनंद लीजिए।

0: दोस्तों फिल्मी गपशप में आज के लिए बस इतना ही। अब आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार के लिए। फिर से लौटेंगे दोस्तों रेडियो ऑन डिमांड के कार्यक्रम के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेक्षण से संबंधित है। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने यह भी बताया कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावों और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक, आईआईएन और लॉसिकी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां हम बात करते हैं हमेशा दिल से दिल तक। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास संगीतमय कार्यक्रम में। आज हम लेकर आ रहे हैं एक बिल्कुल खास पेशकश, रेडियो ऑन डिमांड, जहां संगीत अब सिर्फ हम नहीं बल्कि आप चुनेंगे। दोस्तों, ये प्रोग्राम आपके लिए ही है। आपकी पसंद, आपकी फरमाइश और आपके जज्बात अब सब कुछ रेडियो पर सुनाया जाएगा, क्योंकि हम मानते हैं कि संगीत तभी और ज्यादा खास बन जाता है जब वो किसी की यादों, किसी की खुशी या किसी की महसूस की हुई बातों से जुड़ा हो। इस रेडियो ऑन डिमांड में हम बजाएंगे वो गाने जो आप हमसे रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे वो पुराने सुकून भरे नगमे हो, 90s के रोमांटिक हिट्स हो, नई पीढ़ी के ट्रेंडिंग गाने हो, या फिर कोई ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत करीब हो। बस आप हमें अपनी फरमाइश भेजिए और हम उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9436887808। तुरंत फोन उठाकर मैसेज लिख दीजिए, क्योंकि 50 मिनट तक हम लाइव आपके सारे मैसेजेस देख सकते हैं, देख रहे हैं, और गीत प्ले करेंगे जिसे आपने रिक्वेस्ट किया है। दोस्तों, हर गाने के पीछे एक कहानी होती है। कभी वो पहली मोहब्बत की याद होती है, कभी किसी अपने के साथ बिताए लम्हों की खुशबू, तो कभी जिंदगी के किसी खास पल की निशानी। और आज ये प्रोग्राम उन्हीं कहानियों को आवाज देने के लिए है। आप हमसे अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपके उस सॉन्ग रिक्वेस्ट को जरूर हमारे रेडियो ऑन डिमांड के इस कार्यक्रम में प्ले करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप हमें मैसेजेस भी भेज सकते हैं अपने नाम के साथ। अगर आप कोई मैसेज, कोई गीत किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए उसे जरूर करेंगे हमारे रेडियो ऑन डिमांड के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर नंबर बता दूं, नंबर है 9436887808। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां प्लेलिस्ट हम नहीं बनाते, आप बनाते हैं। यह है हमारा और आपका खास प्रोग्राम रेडियो ऑन डिमांड, जहां हर फरमाइश है खास और श्रोताएं है स्पेशल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये संगीतमय सफर। और पहला रिक्वेस्ट हमें आ चुका है, पहला रिक्वेस्ट आया है हमें घुमे माई बागरा जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं हीगी बागरा से। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म सिलसिला का ये कहा आ गए हम। इस गीत को दोस्तों गाया है अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर ने। तो चलिए सुनते हैं घुमे घुमे माई बागरा जी का सॉन्ग रिक्वेस्ट।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
3: नमस्कार दोस्तों, आप सब सुन रहे हैं रेडियो ऑन डिमांड आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ। मैं हूँ आपकी आरजे मंज। चलिए अब लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट। अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट दोस्तों हमें आया है हमारे डेली लिस्नर, बहुत ही प्यारी

ज्योति सुरेन जी की तरफ से, जो कि लिखते हैं हेलम आसाम से, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म वादा का, मैं इश्क उसका, जिसे गाया है बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की जोड़ी ने। तो आशा करते हैं ज्योति सुरेन जी कि आप हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि हम आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट कर रहे हैं फुलफिल। दोस्तों, अगर आप भी हमें लिख भेजना चाहते हैं अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट, अपने डेडिकेटेड मैसेजेस, तो तुरंत फोन उठाइए और मैसेज कीजिए। नंबर है 9436887808। हमारे हमें आपका मैसेजेस का इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं मैं इश्क उसका।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों चलिए लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट रेडियो ऑन डिमांड के इस कार्यक्रम में। हमें लिखा है फिर असम से गीता पेगू जी, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है सोनू की टिट्टू की स्वीटी की फिल्म से तेरा यार हूं मैं। गीता पेगू जी, आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको एक बार फिर से धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमें लिखने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए। हम आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट ले रहे हैं अभी, तो चलिए सुनते हैं आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट, तेरा यार हूं मैं।

0: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: The Maruti Suzuki Victoris is finally here. And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
1: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: दोस्तों रेडियो ऑन डिमांड पर अगला रिक्वेस्ट आया है हमें जोगेंद्र रोंगपी सोनाली इंकिपी और धोरोंकिरी रोंगपी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं सरिहजन कार्वी आंगलोंग से और वो डेडिकेट करना चाहते हैं अपने दोस्तों को अमल बसुमतरी बिरेन हांसे भाईकोन मुंडा रमेश पात्रो रुनू पात्रो और सभी आरजे और ईटानगर के सभी श्रोतागणों को उन्होंने ये गीत डेडिकेट किया है. गीत है फिल्म नागिन का जिसे गाया है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर. तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना. चलिए दोस्तों साथ मिलकर सुनते हैं उनका डेडिकेटेड ये सॉन्ग रिक्वेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस. हमारे से जुड़ने के लिए आपको दिल से धन्यवाद करते हैं. चलिए सुनते हैं आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट.

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
2: दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड, जहां हम वही गीत प्ले करते हैं जो आपके दिल के है करीब। जी हां, आप हमें अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट लिख भेज सकते हैं और हम उन्हें लाइव यहां देखते हैं, लाइव उन्हें यहां प्ले करते हैं और आपके डेडिकेटेड मैसेजेस के साथ। दोस्तों, नंबर है 9436887808। तुरंत ही फोन उठाइए और इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, हम आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट जरूर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब लेते हैं अगला रिक्वेस्ट दिव्या से, दिव्या विश्वनाथ से, जो कि लिख रहे हैं असम से। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है लेजा, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया कि उन्हें कौन सा वर्जन सुनना है इस गीत का, क्योंकि एक है ओल्ड वर्जन जो मुझे बहुत प्यारा है, एक है जो न्यू वर्जन वो काफी लोगों को प्यारा है। सो आई एम नॉट रियली श्योर कि वो कौन सा वर्जन सुनना चाहते हैं।

0: और क्योंकि हम अपने श्रोतागणों से इतना प्यार करते हैं, तो हम दोनों ही वर्जन्स प्ले करने वाले हैं अभी। दिव्या जी, आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम के साथ। तो चलिए लेते हैं आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट, और हमें जरूर बताइए कि आप किस सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग आप सुनना चाह रहे थे, हमें मैसेज कीजिए। वैसे हम आपके लिए दोनों ही सॉन्ग्स प्ले करने जा रहे हैं, तो दोस्तों जल्दी मैसेज कीजिए, अभी भी समय है। 9436887808 फोन उठाइए और हम आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट आपके लिए जरूर प्ले करेंगे। तो चलिए सुनते हैं।
1: पाजी थोड़ा जा क्लोज, थोड़ा जा। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, रुको, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह भाई वाह, की जोड़ी है यार, गुड।
2: ध्वनि, तू कहाँ गुम हो जाती है? तू भी चलना हमारे साथ,
1: आइए आइए सर,
2: सनसेट पॉइंट तक फोटो खिंचाना।
3: नहीं, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ ऊंची ऊंची फोटो सेशन में। आई विल स्टे हियर, जस्ट मी।

0: चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ। पर क्यों? क्योंकि ये देखो #you #ouch #h और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे पुतली से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

था मॉडर्न रेंडिशन ध्वनि भानुशाली की। चलिए अब सुनते हैं इसी गीत का ओरिजिनल, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और उस्ताद सुल्तान खान ने। और आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा वर्जन पसंद है।

0: दोस्तों, अभी हमें दिव्या जी का मैसेज आया है और उन्होंने क्लियर कर दिया कि उन्हें सुनना था ध्वानि भानुशाली का ले जा रहे, लेकिन साथ में हमने बोनस में उन्हें श्रेया घोषाल और उस्ताद सुल्तान खान की भी ले जा सुना दिया। मुझे ये गीत पसंद है, आशा करते हैं कि आप सभी श्रोताओं को भी ये गीत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आज के रेडियो ऑन डिमांड पर बस इतना ही। हमें बहुत सारे प्यार, बहुत सारे मैसेजेस देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर किसी के सॉन्ग रिक्वेस्ट को हम आज पूरा नहीं कर पाए तो हमें माफ कीजिए, कल सुबह इसी समय पूरा होगा आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट सबसे पहले।
1: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Day Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: The Maruti Suzuki Victoris is finally here. And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakh.
2: And benefits up to Rs. 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
4: Attention! Pare Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों, इसी के साथ रेडियो ऑन डिमांड यही पर होता है समाप्त और हमारी पहली ट्रांसमिशन भी। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद थे अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगजंग एवं तकनीकी अभियंता ताना आतुम। उम्मीद है दोस्तों, आज का सफर गाने और गुफ्तगू ने आपका साथ अच्छा निभाया होगा। अगर आपका कोई पसंदीदा गाना रह गया हो तो फिक्र मत कीजिए, अगली बार हम फिर जरूर मिलेंगे। अब दोस्तों, हमारे स्टूडियो की जिम्मेदारी मैं अपने अगले आरजे को सौंप रही हूँ। आपके साथ जुड़ेंगे कुछ पल में आरजे गीचे कानिक, तो लेकर आएंगे आपके लिए और भी बेहतरीन पेशकश और भी खुशनुमा गीत। तो मुझे यानी आपकी आरजे बिंदुंग दिंदो मंच को दीजिए इजाजत। दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जिस जहां हम बात करते हैं हमेशा बस दिल से दिल तक।
5: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार और यहां की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कांसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और एक नई मुस्कान लेकर आती है, और जब इस सुबह का साथ हो सुरों का तो दिन और भी हसीन बन जाता है। दोस्तों, गली ने दस्तक दे दी है हमारी दूसरी प्रसारण सभा की, और एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारी दूसरी प्रसारण सभा में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त गिची कनिक, और अगले कुछ घंटों तक सुरों और बातों का ये खूबसूरत सफर हम साथ मिलकर तय करेंगे। आपको बता दूं, पहली प्रसारण सभा में आपका साथ निभाया आरजे मंच ने।

और आपको बता दूं, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता टिम टिम। दोस्तों, सुबह के 11:13 हो चुके हैं और धूप धीरे धीरे अपना रंग दिखा रही है। ऐसे में चाहे आप दफ्तर में हो, घर पर हो या सफर पर हो, उम्मीद है हमारे कार्यक्रम और फिल्मी नगमे आपके दिल को और भी खुशनुमा बना देंगे। आइए दोस्तों, इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्मी लहर का। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा के कुछ चुनिंदा और बेहतरीन फिल्मी नगमे जो पुराने यादों को और भी ताजा करेंगे और नए लम्हों को भी खास बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के फिल्मी लहर कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन पाएंगे अनुराधा श्रीराम की आवाज में फिल्म मुझे कुछ कहना है से।

दोस्तों, अभी आपने इस गीत को सुना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से। आइए दोस्तों, अगला गीत सुनते हैं सोनू निगम, शंकर एहसान लोई की आवाजों में फिल्म कल होना हो का टाइटल ट्रैक सॉन्ग।

0: That was our playlist. These songs remind us why romance continues to inspire artists around the world. I hope you enjoyed this musical journey. Stay tuned for more great music coming your way on Western Melodies, only on Akashvani Itanagar. This is Coco signing off. Bye-bye.
1: श्रोताओं, इसी के साथ ही अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र

0: क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan. The project has been developed at a total cost of 480 crore rupees. Spread over an area of more than 23,000 square meters, the new terminal building is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. The inauguration of the new terminal building at Jodhpur Airport will provide a significant boost to tourism, trade and employment generation in the region. Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur. With an allocation of 28,840

दोस्तों कहते हैं यादें कभी पुरानी नहीं होती। वक्त जरूर गुजर जाता है लेकिन कुछ गीत हमेशा दिल के करीब रहते हैं। उन्हें सुनते ही जिंदगी के खूबसूरत लम्हे एक बार फिर आंखों के सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम यादों की बारात का। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं हिंदी सिनेमा के वो बेहतरीन और यादगार गीत जिन्होंने अपनी मधुर धुनों और दिल को छू लेने वाले बोलों से हर दौर के श्रोताओं के दिल में एक खास जगह बना ली है। तो चलिए गुजरे हुए सुनहरे लम्हों की इस हसीन महफिल का आगाज करते हैं। लीजिए पेश है यादों की बारात कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, आज के इस खूबसूरत यादों की बारात में हमने मिलकर फिर से जी लिए वो हसीन लम्हे, वो पुराने गीत जो दिल को सुकून देते हैं और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये यादों भरा सफर पसंद आया होगा और अब हमें दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी सफर यही खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है एक और खास कार्यक्रम का। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम गीतमाला का, जहां हम लेकर आएंगे दिल से जुड़े हुए गीत जो समर्पित है हमारे आर्मी भाइयों और बहनों के नाम, उनके जज्बे, उनकी हिम्मत और उनके बलिदान को सलाम करते हुए। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अगला सफर होगा देशभक्ति और एहसासों से भरा। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त गिची कनिक और आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

दोस्तों इसी के साथ ही चलिए गीतमाला कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं बी प्राक की आवाज में फिल्म केसरी से।

0: और बिस्मिल दा संदेश है कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन जो जिसमें फिरंगियों ने पैसा जानता है उसे हम काकुरी में लूटेंगे, काकुरी कबाब खाते खाते लूटेंगे, हाँ, और पैसों से हम खरीदेंगे बम। क्या खरीदेंगे? बम।
1: तू नहीं हटता, उन्हें दूध देना बंद कर दे।

0: सुन, तेनु बिस्मिल दा संदेश मिल गया
1: है?
0: नहीं तो सुन, 8 दिन बाद जो ट्रेन लखनऊ जा रही है उसे हम काकोरी में लूटेंगे। बड़े पैसे जा रहे हैं अंग्रेजों के, उसमें लूटेगा
1: नहीं।
0: यार उसे हम हथियार खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे?
1: हथियार।
0: हाँ शाबाश।

इस बिल का संदेश है। लखनऊ जाने वाली ट्रेन जिस पे फिरंगियों का पैसा जाता है, उसे हम 7 दिन बाद काकोरी में लूटेंगे और उन्हीं पैसों से आएंगे हमारे हथियार।

श्रोता दोस्तों, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीतमाला यहीं पर समाप्त होता है। और आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क

0: के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएपीए अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan today. The project has been developed at a total cost of 480 crore rupees. Spread over an area of more than 23,000 square meters, the new terminal building is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. The new terminal building at Jodhpur Airport will provide a significant boost to tourism, trade and employment generation in the region. Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur with an allocation of 28,840 crore rupees over the next 10 years. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. The Union Home Ministry has designated 23 individuals based in Pakistan as terrorists under the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. They were linked to Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Tayyaba and other organizations. These individuals were designated as terrorists for their involvement in various activities, including infiltration, recruitment, supply of arms and planning attacks in Jammu and Kashmir. This will allow agencies such as the National Investigation Agency to block their finances, impose embargoes on arms sales and seize their assets. The government has issued notice to Telegram over widespread piracy reports. According to official sources, the government has directed Telegram to take immediate measures against pirated films and OTT content. Sources

दोस्तों स्वागत है आप सभी का हिंदी क्लासिक म्यूजिक के इस खास सफर में, जहां हर सुर अपने साथ लेकर आता है यादों की महक और दिल को छू लेने वाली कुछ कहानियां। दोस्तों 60s से 80s का वो सुनहरा दौर जहां लफ्जों में मोहब्बत थी, दोनों में जादू था और हर गीत वक्त के साथ और भी हसीन होता चला गया। तो चलिए इस खूबसूरत सिलसिले की शुरुआत करते हैं एक मस्त रोमांटिक और एवरग्रीन गीत के साथ। आपको बता दूं, इस कार्यक्रम का पहला गीत है एक मई और एक टू फिल्म खेल खेल में से। और दोस्तों इस फिल्म में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की दिलकश जोड़ी ने अपनी जबरदस्त केमिस्ट्री से सबका दिल जीत लिया था। इस गीत को अपनी सुरीली आवाजों से सजाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और बोल लिखे है गुलशन बावरा ने। और दोस्तों ये गाना आज भी अपनी मस्ती, रोमांस और यूथफुल एनर्जी के लिए उतना ही पसंद किया जाता है जितने अपने रिलीज के वक्त किया जाता था। तो लीजिए दोस्तों, सुनिए और गुनगुनाइए इस गीत को।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों चलिए अब इस हसीन सफर को आगे बढ़ाते हैं एक और सदाबहार नगमे के साथ। आपको बता दूं अगला गीत है फिल्म द ट्रेन से, राजेश खन्ना और नंदा पर फिल्माया गया ये गीत। अपनी रोमांटिक अदा और एवरग्रीन मेलेडी के लिए आज भी बेहद मशहूर है। इस खूबसूरत गीत को अपनी जादुई आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने और इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। तो दोस्तों पेश है वो गीत जो हर दौर के संगीत प्रेमियों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बना रहा। आइए सुनते हैं इस गीत को।

दोस्तों, अभी आपने इस गीत को सुना सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर के आवाजों में फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। आइए चलिए दोस्तों, कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक को आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त है एक ऐसे गीत का जिसका असली रूप भी सुपरहिट रहा और जिसका रिमिक्स वर्जन भी एक पूरी जनरेशन का फेवरेट बन गया। दोस्तों, अगला गीत है फिल्म समाधि से। साल 1972 में रिलीज हुई इस फिल्म में धर्मेंद्र डबल रोल में नजर आए थे। उनके साथ आशा पारीक और जया भादुरी भी मुख्य भूमिकाओं में थी। फिल्म की कहानी एक पिता और बेटे के जीवन, विचरण और फिर तकदीर के अनोखे मोरों के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक्शन, रोमांस और इमोशंस का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। दोस्तों, इस चुलबुले गीत को अपनी मधुर आवाज दी है लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने। और हाँ दोस्तों, इस गीत का 2002 में आया रिमिक्स वर्जन जिसमें शेफाली जरीवाला नजर आई थी, वो भी जबरदस्त हिट हुआ था और उसने इस गीत को एक नई पहचान दे दी थी। आइए दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं इस गीत को।

दोस्तों, इसी के साथ यही समाप्त होता है हमारा आज का हिंदी क्लासिक म्यूजिक का सफर। उम्मीद है 60s से 80s के इन सदाबहार गीतों ने आपकी यादों को एक बार फिर से ताजा कर दिया होगा। और चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली पेशकश की ओर। और आपको बता दूं, अब शुरू हो रहा है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का सिलसिला, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक फिल्मी नगमे। जी हाँ दोस्तों, और सबसे खास बात, आज के इस सेगमेंट में हम बजाएंगे बैक टू बैक हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, ताकि संगीत का ये खूबसूरत सफर बिना किसी रुकावट के यूं ही चलता रहे। तो कहीं मत जाइए, अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और तैयार हो जाइए लगातार बजने वाले बेहतरीन हिंदी फिल्मी गीतों का लुफ्त उठाने के लिए। बस बने रहिए हमारे साथ, यानी अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात और आपकी रेडियो दोस्त गिजी कनिक के साथ। आइए इसी के साथ आपको सुनवाते हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म कृष्णा कॉटेज से श्रेया घोषाल की आवाज में।

दोस्तों आप इस गीतों का आनंद ले रहे हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, चाह होती है दिल से दिल की बात। और आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज, और 2:15 पर प्रसारित होगा दोपहर समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी

0: राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसार

0: को ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार पांचवें दिन जोरदार बारिश जारी है।

0: बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोता दोस्तों, अभी आप बारी बारी से सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। आपको बता दूं, इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का, जहां हम आपको सुनवाते हैं 90s के हिट गानों को।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त गिची कनिक और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। दोस्तों, अगले कुछ पल होंगे उन धुनों के नाम जिन्होंने कैसेट से लेकर प्लेलिस्ट तक अपनी जगह हमेशा बनाए रखी है। जी हां दोस्तों, चाहे वो रोमांस हो, दोस्ती के लम्हे हो या दिल को छू जाने वाली मेलोडीज, 90s का हर गाना अपने साथ एक अलग ही मैजिक लेकर आता है। तो दोस्तों, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, दिल को म्यूजिक मोड में ले आइए और चलिए शुरू करते हैं एक और खूबसूरत म्यूजिकल जर्नी। ये है हिट्स ऑफ 90s कार्यक्रम। और दोस्तों, आज के हिट्स ऑफ 90s कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो आज भी हर म्यूजिक लवर की प्लेलिस्ट का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म परदेश की कहानी भारत की परंपराओं और विदेशी जिंदगी के बीच के जज्बातों को खूबसूरती से पेश करती है। कहानी गंगा और अर्जुन के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जहां प्यार, परिवार और अपनी संस्कृति की अहमियत को दिल छू लेने वाले अंदाज में दिखाया गया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, महिमा चौधरी और अमरीश पुरी ने यादगार अभिनय किया था। तो चलिए दोस्तों, आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: आइए दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का अगला गीत सुनते हैं, साधना सरगम की आवाज में फिल्म विश्वात्मा से।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s यही पर समाप्त होते हैं। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और अब से कुछ ही देर बाद यानी 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से प्रसारित न्यूज हेडलाइंस। 3 बजे शुरू हो जाएगा मिश्मी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम, और 3:15 पर थाई कामती श्रोताओं के लिए विशेष कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: दिस इज अपुगापक। टुडेज हेडलाइंस आर: Prime Minister Narendra Modi inaugurates new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan. Modi also launches modified Udaan schemes in Jodhpur. Prime Minister Narendra Modi dedicates, inaugurates and lays foundation stone for various development projects worth over 1 lakh crore rupees at Balotra, Rajasthan.

नहीं, आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ में मचलांग खामते खामते हो कुमा हो मनाई वंचने लाखनी पिताई सोंहिंग पा साउ तो सक्रे पिमंग हिंग सांपा पेट सब पेट तो सासना सोंहिंग हापा चेट सब तो इंगनाची पिमंग सोंहिंग साउ हो तो निन जुलाई नई सीवन खौखाम लुक चौतान से नमसो मैं हनाई थोम खाता मनाई राजस्थान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मंचाओ टर्मिनल बिल्डिंग अनमल अनलंग चाहंग जोधपुर एयरपोर्ट ओपुट हो कयाओ अमु प्रोजेक्ट नाय खन सी पा पेटसेप कुक्ते माय हिट कयाओ चोम कनेक्टिविटी नमान नाय खौसे मिस्टर मोदी उड़ान स्कीम अनमल को निया जोधपुर माय पुटपे ह कयाओ लोंग नाय खौ औखनी एक सिविल एविएशन अनमंग हाओ कयाओ खनसाम लोंग उरे देश का आम नागरिक मैको चोय लुय कयाओ न स्कीम ने मै ngân खन सौ पेट हिंग पेट पा सी सब कुते चोंग हर चा हंग से पी सी कन पाओ खनी लेंगमेन एविएशन ले डेवलपमेंट मै अमु तक हिट याओ वन मंगा सफांग अनलंग मा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर चुवा शिवराज सिंह चौहान तै नुलेम ती अन फुन टु योम खानसाम लाइ पुनै सी कुपु कुना ती लाइ अन मुंग हो मै यप या सुनै खौ को नुलेम कयाओ इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम अन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो मै मिस्टर शाह संखाम सी मंग स्टेट असम ने अरुणाचल प्रदेश में हकनु लेम अन कुप नम थूम नोय कान सी सोम हुन यी ने खौ कयाओ मंग असम में जिला लाई अन में नम लोंग नम लोंग औ थूम मान कंसु खनसम अरुणाचल प्रदेश में को नोय कान सी तांग लुलेंग पै औ हाप सौ कयाओ Chofu State Law Minister Kentu Jini Manchau, Union Road Transports and Highway Minister Chiwan Nitin Gadkari Mai, Hien Kham, Amu Me Tang, Akajan Likabali Ban Me, Strategic Road Nai, Border Roads Organization Khau Mai, Ha Aap Ha Kayao. Bilateral Investment Agreement BIA and จวงมึงเฮาตั้งจวงมึงอิสราเอลไซน์กันเดือนสัปเทมเบอร์ในเปียดวันมือปีทรงหิงเศร้าหาตูไหมขัดขามกันกันไหนตราอามันลุกมาไหนกูมาเยาเฮาปูมึงตั้งซองฮิตนี่ฮิตลงกะมาคายเปลี่ยนขันซ้ำสังว่ามึงกลางไหมยุงยับลุงแก่อันลงกะไหมตะสมลุงไหนเฮาปูมายังสินี่สิ BIA Bilateral Investment Agreement ไหนอาเขนำVice President Chiwa CP Radha Krishnan wa amu journalism amu lau nam kham ne kan pa an cha mai nai wa wayang kham phet kham pham ma wa lau khai ni si wa kayo kham nai man chau na it did foundation day celebration and organizer weekly khau mai nia new delhi mai wan manga wa kayo man chau public song an chiwa hindutva discourse after independence ngai Temples Beyond Bharat putpe ha kaya ho. One Arunachal Pradesh Battalion NCC khau ta NCC Group Headquarter Tejpur khau Combined Annual Training Camp kam Yuva Apda Mitra Scheme Program Songhing Sao Ho Sao Che Tu Nai Wan Manga Ausut Oyao Kaya

0: Muôn phiền tự lạc xa mừng, nhưng nâng bằng chùm cùng con xoang
1: mừng. Chùm nâng ở khiến ngâm nà lý nở studio máy chỉ cần mà bà phá bói nè thôn sĩ chả hăng mà này khám tì hậu tự khai máy xuất yếu hò.
2: का प्रसारण किया जा रहा है मीडियम वेव 444 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज, साथ ही डीआरएम 666 किलो हर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी के मुताबिक शाम के 3:30 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं उद्घोषक प्रीतम दास आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज सन 2026 के जुलाई महीने की 4 तारीख है और दिन है शनिवार। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और तकनीकी अभियंता एचआर ब्रह्मो। श्रोताओं, हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं सिंगफो श्रोताओं के कार्यक्रम से।
3: श्रोता दोस्तों, अभी आप बारी बारी से सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित न्यूज हेडलाइंस मिसमी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और थाई कमती श्रोताओं का कार्यक्रम। इसी के साथ ही चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट का।

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड अपडेट्स कार्यक्रम, जहां हम लेकर आते हैं फिल्मी दुनिया की ताजा और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एंटरटेनमेंट राउंड अप। तो दोस्तों, आपको बता दूं, सबसे पहली खबर है सलमान खान से। जी हाँ दोस्तों, फैंस सलमान खान को अपूर्वा लखिया की फिल्म मातृभूमि में वार रेस्ट इन पीस में देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। हाल ही में खबरें आई थी कि फिल्म को CBFC सर्टिफिकेशन को लेकर दिक्कत आ रही है और सर्टिफिकेशन होल्ड पर है, लेकिन सलमान खान फिल्म्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए इन अफवाहों को खारिज कर दिया है और साफ किया है कि सर्टिफिकेशन को लेकर फैली ये अफवाहें बिल्कुल झूठी है। और दोस्तों, अगली खबर कृति सेनन की। एक इंटरव्यू में कृति ने फिल्म इंडस्ट्री में जेंडर बायस पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि मेल स्टार्स के सामने असिस्टेंट डायरेक्टर्स ज्यादा हेसिटेट रहते हैं, जबकि फीमेल एक्टर्स को अक्सर टेकन फॉर ग्रांटेड समझा जाता है। कृति का मानना है कि टैलेंट के साथ साथ रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट भी हर कलाकार का हक है। दोस्तों, बात करते हैं हेरा फेरी 3 की। तो दोस्तों, डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने कंफर्म किया है कि वो हेरा फेरी 3 डायरेक्ट नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रोड्यूसर फिरोज नादियाडवाला पर बार बार अपमानित करने का आरोप भी लगाया। प्रिया दर्शन का कहना है कि अगर वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होते तो हेरा फेरी फ्रेंचाइज को देश की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजेस में शामिल कर सकते थे। और दोस्तों, अब बात करते हैं आलिया भट्ट और सरबरी स्टेरर अल्फा की। तो दोस्तों, 3 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिक्स रेस्पॉन्स मिला है। इसका असर बॉक्स ऑफिस पर भी देखने को मिला, क्योंकि अल्फा ने YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में सबसे कम ओपनिंग डे

कलेक्शन दर्ज किया है। और दोस्तों, अजय देवगन और रितेश देशमुख की धमाल 4 को सीबीएफसी ने कुछ सीन्स और डायलॉग्स में बदलाव के बाद ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ दिलजीत दोसांझ की लंबे समय से चर्चा में रही फिल्म पंजाब 95 का नाम बदलकर सतलुज कर दिया गया है। खास बात यह है कि फिल्म अब बिना किसी कट के रिलीज के लिए तैयार है। और दोस्तों, आखिरी खबर अक्षय कुमार से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार ने पिछले एक महीने में मुंबई के अपने 4 लग्जरी फ्लैट्स बेचे हैं, जिसे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। तो दोस्तों, फिलहाल बॉलीवुड की दुनिया से इतना ही। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त गीची कनिक, और अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। इसी के साथ ही बॉलीवुड अपडेट्स कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक प्यारे से नगमे का। आपको बता दूं, आप इस गीत को सुन पाएंगे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी के आवाजों में फिल्म भूत बंगला से।

दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट यही पर समाप्त होता है। आपको बता दूं अब से कुछ ही देर बाद यानी 3:40 पर आप सुन पाएंगे वांगचो बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वांगचो बोली में समाचार। वांगचो श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। इसी के साथ ही चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी हिंदी फिल्मी नगमों को।

0: दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद यानी 4 बजे आप सुन पाएंगे इदु मिस्मी बोली में समाचार। इसके बाद हम जारी रखेंगे हमारे हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला। फिलहाल तब तक के लिए कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए।
1: जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए, अब प्रस्तुत है इदु मिस्मी श्रोताओं का कार्यक्रम।
3: एचा आकाशवाणी ईटानगर अचला पुची ईपी मानुलेनी एतानिचे इदु मिस्मी आहोला किजी दागालंबो राजस्थान जोधपुर अतिकोची माओकापेने इहो करो पाऊं एठोगेने आज तेला जोधपुर एयरपोर्ट माचे मैं टर्मिनल ओ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में ओना आय पहा बदा आहोगा आ एयरपोर्ट है उड़ान स्कीम को माने आज तेगा बमा हो इगा हो नुमा एजन बानी हो यो दोने मो बेंगो ने कापु को पाऊ एठोगेने अतिकाची एयरपोर्ट दो प्राबा जतेगा उदा ला होगा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह में बुनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह गो चौगा गने अमोरा युवा गने इंडिया माजे अतिका उखोमा बुरु लापगे रूमी यौन दगा चिपोआ चिचागा ही बदा आहोगा अम होम मिनिस्ट्री माजे इंटर मिनिस्ट्रियल टीम में असम ने अरुणाचल प्रदेश लापगे बुरु में आतुआ डगा स्टेट मामा अतुशिगे ने रिपोर्ट आज हाँ तिजिना ने सा में लाते बदा आहोगा असम माजे डिस्ट्रिक्ट उखोमा अनिमी माचे बुगा महो अरुणाचल प्रदेश माचे तो अतिका मा इलीजो दोने आए छे तो देगा आहोगा बहा इनु एजार के हु पी होलो मा माचे नु बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बी आर तो चाने हिलागने नेशनल हाईवे दोने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL हागा बा आका जान लिखा बाली बा में आर्मी आए छे है बी आर ओ हाला जेना बनाला ने अरुणाचल प्रदेश मिनिस्टर केंतो जीनी में यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट दोने हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी का मेमोरेंडम आजो हाथे का दा आहोगा आर्मी आए छे है बी आर ओ में हुआ ने प्राय अपगाई दा ने जीनी में लगाने बी आर ओ का आयो अपने हुए अंजे भी प्राय खाई दा लगा दा आहोगा इंडिया ने इजराइल में जोरगा उदा लाने एनो सेला पुची हियू माचिनी मैं दिल्ली मने अब बहुत तगा बचा है ऐता ये ना जो ने पगा बोधा ला होगा आहो मीडिया में ऐसे अबुलो तो आशुम ने अंजिते को बचा आहो तो जीना ने वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन में बुनी मैं दिल्ली मने ऑर्गेनाइजर लाएगा इवनी माहौल ने बुगे योएगा आहो जो पा आज तेला ये होनु बाई नी एनागा माची जाबा माहौ लगाने डेमोक्रेसी आमो अखाओ के बने हैं आहो मीडिया में उंजी खीन जोगे व अरुंदायता लाए बदा आहोगा अतिहता तो पा इंडिया मा खुमु दो ने आया पा लाएगा आज पुमे गे वाइस प्रेसिडेंट में आया पा आवा बदा आहोगा असम तेजपुर मा खाजिगा एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर्स को कोची खेगे अरुणाचल प्रदेश एनसीसी बटालियन में ईटानगर से राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज माने अचाचा रूमी के माहो आरवातावे चिपुआ हूँ निगा बने ट्रेनिंग आएगा चाहे बुनी दबादा आहोगा खेगे अरुणाचल प्रदेश बटालियन NCC हूँ मिलिट्री स्टाफ कापी एसोसिएट NCC ऑफिसर आजालम रो दोने खेगे CTO आजामे ट्रेनिंग प्रोग्राम है आयोगा कोलम्बो हाँ थाला पुची जानझ इपी माची ने बोनी लिबा अखाने गई बदा आहोगा तो मची भूमा प्रम्बा जगाला इमो आलम्बर में बुलीना बा नेशनल वाटर अवार्ड ग्राउंड

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज की हमारी दूसरी प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आप सबको बेहद पसंद आए होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा बोली में समाचार। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि आगे के कार्यक्रमों के सफर में यानी हमारी तीसरी प्रसारण सभा में आपके साथ जुड़ेंगे आपके अपने आरजे अपर्णा। तो अब आप मुझे यानी आपकी रेडियो साथी गिची कनिक और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद तमाम सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता तिम तिम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी इटानगर डिब्रुगढ़ मजुसा दुबार रंगकर जुलाई लिंग रंगबलई तारीख पाम हजार निरा खकड़ो पाम रंगजा पलिबी खुमी थोड़ा मसो तंसा प्रोग्राम तफंग मचू रंगजा सौ सै तारीमें कचै रूंग रंग रोहंग कमाइर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी र मचौसा राजस्थान नंग जोधपुर एयरपोर्ट अन्या टर्मिनल बिल्डिंग प खुली द इर प्रोजेक्ट प कुटी रचब लेरा लाख मचसई काम मान द बलिबाय हाताम तुंग नंग रंग कौलाम रथान प आरिंग सताई रो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी र जोधपुर हा नंग मोडिफाइड उड़ान स्कीम डॉप तफंग प जमसो उदे देश का आम नागरिक विजन पर एडवांस तयंग लिंचिंग ओफाम द आचोंग सुरकैवंग होम मिनिस्टर अमित शाह नई आचोंग सुरकैवंग एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान पर मनीषा राम द प्रजु रंग जनरल रे मुंगवंग अखाव हाताम नंग तथिन जान द मान पर रफान द अनिल रंग अहन जनरल खाम लेमरो नई हा खीरो असम नंग नई अरुणाचल प्रदेश नंग तांचों वांगरुंग तांवांग तथिनजान तो प्रप रायकरंग मोरो अमित सार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वंग इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम मरो द आरिंग तांचों वांगरुंग नई एग्रीकल्चर रा मई हम पंतान तथिन तो प्रप रायरंग आरिंग रारुंग होम मिनिस्टर फान द आसाम नंग बलिबाय डिस्ट्रिक्ट ताम नंग खाम पंगलो लेमरो परम अरुणाचल प्रदेश नंग फंगलांग बलिबाय कुकांग हाताम नंग हा खीरो गरी लाम कतंगरो हान रंगो रोक्त अरुणाचल प्रदेश वंग आकाजान हा म लिका बलि बाने बामे स्ट्रेटेजिक रोड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नई मेंटेनेंस काम प बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ वन कुरंग मोरो अरुणाचल प्रदेश लॉ मिनिस्टर केंटो जेनी र अचोंग सुरकैवंग रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी मरो मिस्टर जेनी रंगो इर प्रोजेक्ट प बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वन म कुरजु लाम प जलाउ म तचै रौरे इर हाताम वंग मई म सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स प कजोय कुरक चिंग ओफान द आचों सुरकरी र नई इजराइल सुरकरी र पांग हजार निरा ख्रम पांग नंग सप्तेम्बर जिलिंग राम मचे तारीख सा न्यू दिल्ली नंग बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट नंग साइन कुरित इर एग्रीमेंट प मचो सा मसो से फांग र मुंग नई तुंग नंग बायलेटरल इकोनॉमिक रिलेशन र होम प सेहंग म इर एग्रीमेंट प आरेंग यांग र अरुणाचल प्रदेश अथमता जे फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश बटालियन नेशनल कैडेट कोर्प्स र पन फाइनल कॉम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप कम युवा अपना मित्र स्कीम प्रोग्राम 2026-27 पर मनीषा ईटानगर नंग राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नंग तथुम त फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश एनसीसी कमांडिंग ऑफिसर जखुंग नंग रंगसई राम कैंप तथुम त नंग एनसीसी कैडेट्स हेंग प मुल्ला वारचनैरा वाब्लोंग सन खग थोक तुंग ओफान द आचोंग सुरकैवंग जल शक्ति मिनिस्ट्री र होम अफेयर्स मिनिस्ट्री वन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल नंग नेशनल वाटर अवार्ड्स प तफांग द इर अवार्ड्स म एप्लीकेशन लिख प थवाने छि जया लिंग रामख्रम छे तारीख आतंग नंग ऑनलाइन लम राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल काउ लम कुरक चिंग रो द ड्रग्स नई एच आई वी रा प्रिजन हेल्थ रेस्पॉन्सेस डिस्कसिंग वेलफेयर इनिशिएटिव एंड रिफॉर्म्स फॉर इनमेट्स टू एड्रेस पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस ऑफ सब्सटेंस एब्यूज एंड एच आई वी ट्रांसमिशन ताम कमुंग नंग सासीरा म स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीटिंग प मनीषा पापमपुरे डिस्ट्रिक्ट नंग जुली हावंग डिस्ट्रिक्ट जेल नंग तथुंग द इर कंसल्टेशन मीटिंग प सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एडुकेशन सी डी ओ ई नई रिकवरी वेलनेस सोसाइटी रा श्रीमंत फाउंडेशन फॉर कल्चर एंड सोसाइटी ताम कचू रौरे तथुंग द प्रिजन हेल्थ कमुंग नंग

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा समाचार। अगर आप हमारे तांगसा श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जीवन शतरंज के खेल की तरह है और ये खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है, आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। आज इसी पॉजिटिव थॉट के साथ ही हम अपनी तीसरे प्रसन्न सेवा की आगाज करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी वार्म इवनिंग फ्रेंड्स। संचर निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मो तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी की अपनी आरजे अपना आप सभी का तह दिल से स्वागत करती है आज के चंद लम्हों के इस खूबसूरत सफर में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सफर की शुभारंभ करने से पहले हम थैंक्स बोल देते हैं, शुक्रिया अदा कर देते हैं आरजे गिचिक करी की, जिन्होंने आप सभी की भरपूर मनोरंजन की है अपने सेकंड ट्रांसमिशन के दौरान और जाते जाते मुझे स्टूडियो हैंडओवर करके गई है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपसे बस कुछ ही देर में एक और खूबसूरत सी शाम आप दोस्तों के नाम हम करेंगे और शुरू करेंगे गुड इवनिंग ईटानगर का सेगमेंट। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual vivity engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे

नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

गुड इवनिंग ईटानगर के इस सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम कुछ खास बात करेंगे एक ट्रिब्यूट अनसंग हीरोज के लिए है आज हमारी तरफ से अरुण एफएम की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन सौरभ कालिया, बातें करते हैं कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में। कारगिल के युद्ध के दौरान 1999 में इस जाबाज कैप्टन ने मई के महीने में लद्दाख के काक्सर सेक्टर में गश्त के दौरान उनके 5 साथियों के सहित जब वे गश्त लगा रहे थे यानी कि अपने बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे थे उस वक्त जो है उनके पास इतने हथियार भी नहीं थे और पेट्रोलिंग टीम के साथ बर्फीले पहाड़ों में जो है वो चल रहे थे। मौसम बहुत ही दुर्गम और चढ़ाव के बीच भारतीय जवानों की गोली खत्म हो गई थी और पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तान के सिपाहियों ने कैप्टन सौरभ कालिया तथा उनके 5 साथियों को बंदी बना लिया था। 22 दिनों तक जो है कैप्टन सौरभ कालिया पाकिस्तानियों के साथ रहे, उनके सेना के साथ उन्हें ले लिया गया, बंदी बना लिया गया। उनको वो टॉर्चर दी गई जिसके बारे में सोचते ही रूह कांपने लगती है। उनके कान छेद कर दिए गए, आंखें फोड़ दी गई, नाखून उखाड़ लिए गए, उनके शरीर को सिगरेट से जला जला के दाग दिया गया, उनके जीभ काट लिए गए, नाक काट लिए गए, उनके प्राइवेट पार्ट्स तक को काट लिया गया। और जो है इस तरह से 9 जून 1999 को उनके विशत जो है शव को भारत को सौंपे गए। दोस्तों जब कहा जाता है कैप्टन सौरभ कालिया की मां ने उस शरीर को देखा, किसी ने भी नहीं पहचाना क्योंकि उनके चेहरे पे ना तो कान थी, ना तो नाक थी, ना तो आंखें थी, कुछ भी नहीं। केवल उसके मां ने एक टुकड़ा जो कान का बचा था उसे देखकर अपने बेटे को पहचाना कि वो सौरभ कालिया है। इतनी यातनाएं देने के बावजूद कैप्टन सौरभ कालिया नहीं टूटे। उन्होंने अपने देश के बारे में सीक्रेट जानकारी, कॉन्फिडेंशियल जानकारी मरते दम तक दुश्मनों को नहीं दी। जी हां, और जो है वो दुनिया से चले गए। कहा जाता है कि उनकी पहली सैलरी भी नहीं आई थी और वे तिरंगे में लपेटकर उनका घर में उनका डेड बॉडी को भेज दिया गया था। उनके पिता जो है इस अमानीय और जो है इस घिननीय जो अपराध पाकिस्तान ने किए थे कैप्टन सौरभ कालिया के ऊपर में, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कटघरे में वो लड़े और अब भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे कैप्टन सौरभ कालिया को भारत सरकार ने अब

तक कोई भी अवार्ड से या फिर वीरता के लिए कोई भी अवार्ड नहीं दिया, लेकिन ये हमारे भारत सरकार की नज़र में है। हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत के इस महान लाल को भारत सरकार जरूर जो है अपना वीर गति प्राप्त के लिए उनको जरूर नवाजेगी अवार्ड से। और कैप्टन सौरभ कालिया को हम नमन करते हैं, ऐसे वीर अनसंग हीरोज हमारे जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए, और सभी बच्चों को जो है हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी इनके बारे में पढ़ने को मिले, यही हम सरकार से भी दरख्वास्त करेंगे। बहरहाल दोस्तों, नमन करते हुए सौरभ कालिया को इस गीत को हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं, और कैप्टन सौरभ कालिया को डेडिकेट करते हैं। जय हिंद।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद के रसायन विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ शिवराज को अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय का नियमित कुलपति नियुक्त किया। अरुणाचल प्रदेश के विधि मंत्री केंतो जूनी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से आकाजान लिकाबाली बामे सामरिक सड़क परियोजना के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन बीआरओ को सौंपने का आग्रह किया। अरुणाचल बुलेट क्लब ने स्टैंड इन सॉलिडैरिटी रिच बियॉन्ड अभियान के तहत कई पान्योर जिले के पौसा गांव के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राज्यव्यापी दान अभियान आयोजित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा और फीफा विश्व कप में आज रात 10:30 बजे से कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीनीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पोषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने बालोतरा में पचपदारा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद के रसायन विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ शिवराज को दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय का नियमित कुलपति नियुक्त किया है। उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार इस नियुक्ति के साथ विश्वविद्यालय में लगभग 2 वर्षों से जारी अनिश्चितता समाप्त हो गई है। उप सचिव शैर भारद्वाज द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डॉ शिवराज की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि अथवा उनके 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो के लिए की गई है। अरुणाचल प्रदेश के विधि मंत्री केंतो जूनी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से आकाजान लिकाबाली बामे सामरिक सड़क परियोजना के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन बीआरओ को सौंपने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना को बीआरओ को सौंपने से इसका शीघ्र निर्माण और टिकाऊ रखरखाव सुनिश्चित होगा। साथ ही इससे दीर्घकालिक राष्ट्र सुरक्षा हितों की रक्षा होगी और क्षेत्र में लोगों के स्थायी सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। अरुणाचल बुलेट क्लब स्टैंड इन सॉलिडैरिटी रिच बियॉन्ड अभियान के तहत कई पान्योर जिले के पौसा गांव के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राज्य

0: व्यापी दान अभियान आयोजित किया गया। यह धन संग्रहण अभियान ईटानगर, होलोंगी, लिकावाली, पासीघाट, पंगन, बोलिंग, रोइंग, लोंगडिंग, चांगलांग, भालुकपोंग और शिलोंग में चलाया गया। एकत्रित धनराशि इस महीने की 8 तारीख को याचुली विधायक तोको तातुम को सौंपी जाएगी ताकि पोसा गांव के प्रभावित परिवारों को इसका वितरण किया जा सके। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और विक्रेताओं की रक्षा करना है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। ये लोग जैश मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार ये आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया है कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत और इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूती देने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारत सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमस्तात के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। यह अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रही है। और अब खबरें खेल जगत से।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया। दूसरी ओर मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूटआउट में धराकर अगले दौर में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच ने अपने करियर की 105वीं जीत दर्ज करते हुए रोजर फेडरर के सर्वाधिक मैच जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जोकोविच ने फ्रांस के आर्थर रिंडरकनिस्ट को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। विश्व नंबर 1 यानिक सिनर भी तीसरे दौर का मुकाबला जीतकर अगले चरण में पहुंच गए हैं। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने क्रोएशिया ग्रैंड चेस टूर के रैपिड वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने 3 मुकाबले जीत लिए हैं। इसके साथ ही वे फ्रांस के अली रेजा फिरोजा के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश अपने 3 मुकाबले ड्रॉ खेलने के बाद शीर्ष खिलाड़ियों से 2 अंक पीछे हैं।
0: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अतुल्या सैयद अली खामेनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान में ग्रैंड मौसल्ला में अयातुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसी के साथ

0: लेटेस्ट न्यूज बुलेटिन। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: अपे आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ व नोक्ते प्रोग्राम अठुए सैधाम वह मंगा बाजी डांगे के ठेजा जुलाई जंग वह बली तारीख हुनी बैठ जा खोब चोको एक तुम्हंगरु तुम में खोबर है डंके राजस्थान व जोधपुर एयरपोर्ट को टर्मिनल बिल्डिंग यान पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में ठेजा लंका के गमे चुटे रखी अरे पे पब्लिक हे पुकरिन में जाचिन खोम रंग खोब वेंटेशन गले अरे प्रोजेक्ट पे चा बली रोक एसेट क्रोर में हुन व गमे चुजेट एकी अरे दिको उड़ान स्कीम पुमिन अरे होकमिन पाई छी को रोक नी हाजत सत चाय सत रोक बली क्रोर सेंक्शन हुन ला में संसी वन मिन गामे जो चुटेट एकी मजा होम मिनिस्टर अमित शाह ले एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान नी में मीटिंग खुन तों वक्त को एल नीनो जून में नंग डियक नंग रंग लपेट ठंग में डंगे के मरियंग मरियंग हा नंगा आहे थुमिन वकवा गामे चुटेट एकी गाले अरे को आसाम ले अरुणाचल वा जंगजा रंग पेट लमे जोलुम हारुट डंगटा पुमे लम लपित अखो छिसेत अहे जे सोकरंग सेंट्रल वा टीम मे वन रंग मिन थोमिन वकवा अंगा नंग स्टेट लॉ मिनिस्टर केंटो जिनी मे सेंट्रल ट्रांसपोर्ट ले हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी नंग अरे अकाजान लिकाबली बामे लम प्रोजेक्ट पे नंग डियक सिक्योरिटी ना जुन को अरे पे बी आर ओ तंग नंग को रंग जो रोसप एकेंगा इंडिया ले इसराइल में न्यू दिल्ली नंग सेप्टेम्बर वैन सत तारीख 2025 जाको बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन हुन वक्त पे ठजा लिन लिन रंग पे लादंग टा ना में चुजत एकी ngale are pe diak ni tung ko nguna kho nga me chu song min rang anga vice president cp radhakrishnan organizer weekly tang rok asset rang pa le rang vo pe ju mani ke va nga me chu tet eki maja new delhi nanga ako te me kitab vani hindutva discourse after independence le temples beyond bharat min release huan va ngale ate me journalism pe khobo tuang tang pe jo choku li jindanga nga me nga ke itanagar wa rajiv gandhi government polytechnic ko first arunachal pradesh battalion ncc me athin commanding officer khan ko ncc group headquarter tejpur khanwa ja echi combined annual training le yuva apda mitra scheme program 2026-27 pe maja thone ke nga me chutet eki are ko chani rup li va isat ncc cadet hokwa anga jal shakti ministry me dab engit rang national water award prize pe ko rang online application lang ke nga home ministry tang rashtriya puruskar portal ko ngale are application pe adi jang rokni vanasat tarik ko ethwana maja ja therang center for distance and online education Recovery Wellness Society le Srimanta Foundation for Culture and Society me Papum Pare District wa Juli wa District Jail ko drugs le HIV bikhwe nang ninsen rinwang wa ngame chute de ki jail wa tongte na RTI Act 2005 jun ko le motha Arunachal Pradesh State Information Commission me Executive Engineer Koloriang PWD Division योमके बगरावा रोकनी हाजत बंगांगुन जंगे के गमे चुटेट एकी तजा मैनचेस्टर नंग टी ट्वेंटी दला हे क्रिकेट दबनी रंग इंडिया ले इंग्लैंड तुलो मिन मिन अरे पे वैनिंगिट बाजी को एलोमा ngale दब रम रंग लुम पे नोटिंगम नंग एलोमा वैनिंगिट तारिक को फाइनल पे ब्रिस्टल ले साउथहैम्पटन नंग लोमिन छिवेंथे जाको अरे तालुम दिको जारम ओडीआई मिन एतु लोमिना अरे टीम नी पे थजारंग नंगनोकते खबर पे अतोको थुनके अदे नंगनोकते से प्रोग्राम को खबंग को चासन सुम्पाल

0: दोस्तों आप हिंदी तथा अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार तथा नोक्ते समाचार सुन रहे थे। अगर आप हमारे नोक्ते श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स मीडियम वेव के 444.4 मीटर में यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, और अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे इवनिंग ड्राइव प्रोग्राम के साथ। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
4: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इवनिंग ड्राइव के इस सेगमेंट में। ये वो सेगमेंट होता है जहां हम बातें करते हैं, कुछ जो है गपशप करते हैं आप सभी से। कभी कभार हम कुछ स्टोरीज वगैरह आप सभी को सुनवाते हैं और बेहद चुनिंदा गीतों की लड़ियों को लेकर हम पेश खिदमत करते हैं। दोस्तों आज मैंने सोचा कि कुछ मन की हो जाए, मन की बात हो जाए। हमेशा आप सब जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात सुनते हैं, तो कभी कभार मेरे भी मन की बात सुन लीजिए। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों वैसे जब हमारे सर पे दर्द हो तो हम फटाक से एक हेडेक की गोली खा लेते हैं और तुरंत हमारा सरदर्द जो है खत्म हो जाता है। कभी हमें बुखार आ गया, हम बुखार

करें। मन में ढेर सारी बातें होती है, या फिर मन सिर्फ एक हमारा जो हम कह सकते हैं ब्रेन का एक थिंकिंग ही है क्या? टेक्निकल मेडिकल टर्म में अगर हम कहें तो क्या हम सिर्फ थिंकिंग को ही मन कहते हैं क्या? बातें करेंगे आज इसी के ऊपर में, लेकिन हो जाए इससे पहले एक प्यार भरा गीत आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, ये जो मन है ना, जो कि हमारे अंदर है, मेडिकल टर्म में भले ही ये हमारे थिंकिंग को लेके बात करे, लेकिन सच्चाई तो ये है, डॉक्टर्स के भी दिल होते हैं, डॉक्टर्स के भी मन होते हैं, और डॉक्टर्स के मन में भी इस तरह की फीलिंग्स होती है हमारी तरह, क्योंकि वो भी तो हमारी तरह ही आम इंसान ही है। जी हाँ दोस्तों, हमारे मन को जो अच्छी लगती है उसे उससे हमें खुशी मिलती है, कुछ जो बुरी लगती है उससे हमें दुख पहुंचता है, कोई हमें मन में चोट दे देता है, किसी के प्यार से हम मन से खुश हो जाते हैं, और कोई हमसे बिछड़ जाता है तो हम मन से टूट भी जाते हैं, जिसे आप दिल से टूट जाना भी कह सकते हैं। बाहरी शरीर का या फिर शरीर के किसी भी अंग का ट्रीटमेंट तो हो जाता है, लेकिन मन का क्या? मन का चेकअप भी दोस्तों वक्त वक्त पर बहुत जरूरी है। वक्त आने पर ये सारे विटामिन्स जिसे हम विटामिन ए बी सी डी कहते हैं ना, इसे देना भी जरूरी है। इसका मतलब विटामिन ए का मतलब वो नहीं है कि विटामिन ए का आप सब्सटेंसेस खा लो। विटामिन ए का मतलब यहां पर जो है एक खुद से प्यार, एडोरेबल, अपने आप से एक प्यार करना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है।

अपने मन में मन को सारे बूस्टअप इम्यूनिटी बूस्टअप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिंदगी के रिश्तों को एक बार हम जिंदा कर देते हैं और इनकी इम्यूनिटी हो जाती है तो वक्त आने पर हमें जो है इस तरह का जो विटामिन से जो हमारे दिल को सुकून देता है, यानी कि खुद से प्यार करना, खुद पर भरोसा करना, खुद के लिए केयर करना, खुद के लिए डेडिकेशन रखना, ये सब जो है देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मन को ये विटामिन्स की डोज और सप्लीमेंट्स देते रहे, ऐड करते रहे। जी हाँ दोस्तों, चलिए बातें और भी करेंगे, लेकिन हो जाए कुछ प्यार भरे गीत।

दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे मन का रोग होता है, जैसे कंपैरिजन, पॉसेसिवनेस, खामोशी, गलतफहमियां, पता नहीं कौन कौन से रोग कर लग जाए और हमारे रिश्तों में दरार ला दे। दुनिया में कोई भी इंसान अकेला नहीं रहना चाहता दोस्तों, सबके अपने मन को अच्छा रखना होता है। हमारा मन जुड़ा हुआ होता है हमारे मन के साथ, हमारे रिश्तों के साथ, हमारे अपनों के साथ। जी हाँ, हम चाहते हैं, हम जिसे प्यार करते हैं, हम जिनको चाहते हैं, वो भी हमें चाहे, बहुत प्यार करे। अगर हमें उनकी तरफ से जो है उतनी रिस्पॉन्स नहीं मिलती है जितना हम करते हैं, फिर हमारे मन को चोट लग जाती है। और जब मन को चोट लगती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है, सारे शरीर को इफेक्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन अगर आपका मन अच्छा नहीं है तो वाकई में आप देखिएगा कि आपको कोई भी काम में आपका मन ही नहीं लगेगा, करने का जी ही नहीं करेगा। ये सचमुच में हमारे मन पर ही डिपेंड करता है और मन को समझने के लिए साइंस ने कुछ अब तक किया ही नहीं। एक्चुअली में अगर कहा जाए तो ये एक साइकोलॉजी का पार्ट है। मैं तो यही कहूंगी कि साइकोलॉजिस्ट जितने हैं वो इसके ऊपर में और ज्यादा जो है शोध करें, डिस्कवरी करें कि मन को कैसे समझा जाए, मन को कैसे जाना जाए। कोई मेडिसिन है ये नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि हमारे मन को जो है मेडिसिन देके खुश करे। हाँ, कभी-कभार खुश करने के लिए कुछ मेडिसिन्स दे दिया जाता है जिसे हम साइकेट्रिक ड्रग्स या फिर साइकोलॉजिक ड्रग्स कहते हैं, लेकिन फिर भी मन का खुश होना और नहीं होना हमारे ऊपर तो छोड़िए, हमारे सामने वाले के ऊपर में भी डिपेंड करता है, उनके व्यवहार में भी डिपेंड करता है और हमारे व्यवहार में भी डिपेंड करता है। जी हाँ, तो मैं इतना ही कहूंगी, बस अपना मन को संभालिए, उसकी देखभाल कीजिए, वरना वो जो है आइसोलेशन मोड पर चला जाएगा दोस्तों। जी हाँ, एक और गीत मैं आप सभी को सुना दूं, बहुत ही प्यारा सा गीत है। एंजॉय कीजिए, बातें और भी करेंगे मन के बारे में।

0: जी हाँ दोस्तों, लगन लगी तुमसे मन की लगन। जी हाँ, वैसे भी रिश्तों को न्यूट्रिशन की जरूरत बारी बारी से होती है। उन्हें सींचना पड़ता है फ्रेंड्स, उनको ग्रो करना पड़ता है, यानी कि ग्रो करना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है ना दोस्तों, तो वो है हमारा रिश्ता, क्योंकि हमारे रिश्तों के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है ना। सो ध्यान रखिएगा अपने मन का, दूसरों के लिए नहीं, अपने मन के लिए, खुद के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मन के लिए अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, और टाइम टू टाइम अपने मन की देखभाल कीजिए, मेंटेनेंस कीजिए, खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, लोग तो वैसे भी चाह के भी ना चाह के भी आपको, आपके मन को चोट पहुंचाने की 100% ट्राई करेंगे, लेकिन आपको संभाल के चलना है। लोगों की चोट देने से भी, नहीं देने से भी, आपको अपने मन को जो है आइसोलेशन मोड में जाने से बचाना है, और अपने मन को खुशी नाम की वाइटामिन्स, जो सबसे ज्यादा तगड़ा है, उस डोज को देते रहिए। सो टेक केयर ऑफ योर मन प्लीज। तो चलते चलते वक्त हो चला है, आप सभी से जो है इवनिंग ड्राइव से अलविदा कहने को। मिलते हैं शाम की महफिल में। आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ, और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
4: Attention! Pare Hydro Power Station under operation.

0: जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दिल से दिल तक बात पहुँचे, मिलते मिलते सनम। ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

वाकई में दोस्तों, आपके दिल से हमारे दिल का रिश्ता वाकई पुराना है, तभी तो हम आ जाते हैं बार बार आप सभी के खिदमत में, आप सभी का मन पसंदीदा प्रोग्राम्स लेकर। बहरहाल अब आप आनंद उठा पाएंगे फ्रेंड्स शाम की महफिल के साथ। शाम की महफिल में आप सभी का तह दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारा यह टास्क रहता है, वादा रहता है आपसे कि आपके शाम को हम कुछ खास बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और जो है आज वैसे भी वीकेंड है, वीकेंड में जो है हम जानते हैं कि इस वक्त जो है बहुत सारे शहर में बहुत गर्मी, बहुत मतलब टॉयलेट करने से बाहर की गर्मी पड़ रही है। ऐसे तो देखा जाए तो पूरे विश्व भर में ही बेहद गर्म अलनीनों की वजह से पड़ रही है, और हमारे शहर में भी गर्मी ने तो कहर ढा दिया है। बहुत सारे शहर में, मुंबई जैसे शहर में बहुत बारिश है, जहां बारिश है वो बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, जहां गर्मी है गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। ऊपर वाला करे भी तो क्या करे, और किस किस की मन की बात सुने, है ना दोस्तों। तो खैर, आपके शहर में अगर गर्मी है तो उठाइए एक अच्छा सा जूस जो कि घर में बना हुआ हो, या लस्सी, या पी जाइए ठंडा ठंडा जूस। और अगर आपके शहर में बारिश हो रही है तो गर्मा गर्म एक कप चाय या कॉफी के इश्क भरी चाय के चुस्किया या कॉफी की चुस्किया लीजिए और हमें सुनिए, क्योंकि हम तो वादा कर चुके हैं आपसे आपके शाम को परफेक्ट एम्बियंस देने के लिए, बिल्कुल खास बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं बहुत बहुत प्यारे प्यारे गीतों में, खो देते हैं हम अपनी शाम को। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि ढूंढ ही लेंगे तुझको जब दिल को मिल जाए फुर्सत, मौसम आए और चले गए देखती रही कुदरत, तेरे ही ख्यालों में बैठे रहे सोच करके कि कब मिलेगी इस दिल को फुर्सत।

दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ पुराने नहीं बल्कि और भी अनमोल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये जो गीत है ना, दिल की गहराइयों में खो जाते हैं, डूब जाते हैं, समा जाते हैं। बहुत ही सुकून देता है जब हम इन गीतों को सुनते हैं। तो आज की शाम एक और गीत आप सभी के नाम। एंजॉय कीजिए फ्रेंड।

0: जी हाँ दोस्तों, गीत गाता चलो ओ साथी, गुनगुनाता चल। जिंदगी को यूं ही जो है दोस्तों, हंसते गाते ही तो बिता देनी है ना दोस्तों। छोटी सी जिंदगी है और हंसते गाते हुए, अपने आप को खुश रखते हुए, दूसरों को खुशी बांटते हुए, बस यूं ही चलते जाना है। बहुत ही खुशनुमा गीत था दोस्तों, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की शाम को आपके लिए खास बनाने के लिए हम कामयाब हुए हैं। तो दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। शाम के ठीक 6 बजते ही वक्त हो जाता है दोस्तों बैक टू बैक हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का, लेकिन ले लेते हैं छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक। आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
2: Get attractive.

0: offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
1: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
2: Attention! Pare Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने, तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी के अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, अब आप आनंद उठा सकेंगे बैक टू बैक हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारे आज की हिंदी फिल्मी गीतों का ये सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे आज के इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल, अब से बस कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे आदि समाचार, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

दोस्तों आप सुन रहे थे आदि में समाचार। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे आदि श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, और वक्त हो चला है आज के कलाकार के इस सेगमेंट का। आज के कलाकार के इस सेगमेंट में आप सभी का हम तह दिल से स्वागत करते हैं। ये वो सेगमेंट होता है जहां पर हम जो है फिल्मी जगत से जुड़े हुए कलाकार, फनकार, अदाकार, संगीतकार या गीतकार हो, या कोई भी फिल्मों से यानी कि बॉलीवुड के दुनिया से हो, तो हम उनके बारे में बातें करते हैं, उनके रोचक कुछ कहानियों को आप तक पहुंचाते हैं, उनके सुपर डुपर हिट फिल्म्स के सॉन्ग्स के बारे में बातें करते हैं और सुनाते हैं सुपर डुपर हिट फिल्म्स के सॉन्ग्स को। जी हाँ, आज मैंने ऐसे ही अपने वक्त की एक बहुत मशहूर जो है एक्ट्रेस, जो कि बहुत ही ग्लैमरस मानी जाती थी उस दौरान, उनके बारे में बातें करने की सोची है, जो कि 70 और 80 के दशक में अपनी खूबसूरती और स्टाइल से सबको दीवाना कर देती थी। जी हाँ, एंड शी इज नॉन अदर देन परवीन बाबी। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, और जो है इनको जो है बॉलीवुड की दुनिया में जब भी ग्लैमर और आकर्षक अदाकारी की बात आती है तो परवीन बाबी का नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है। मैंने पहले ही कहा कि 70 और 80 के दशक में अपनी खूबसूरती और स्टाइल से सबको दीवाना इन्होंने बना के रखा था। उनके चेहरे पर वो चमक थी जो पर्दे पर हर कहानी को खास बना देती थी। उनकी हर फिल्म में उनका व्यक्तित्व इतना मजबूत और प्रभावशाली दिखाई देता था कि लोग उनके किरदार और अंदाज के दीवाने हो जाते। अमिताभ बच्चन के साथ उनके ऑन स्क्रीन जादू ने उन्हें खास पहचान दिलाई और फिल्म दुनिया में उनकी जगह हमेशा के लिए पक्की कर दी। बातें करेंगे परवीन बाबी के बारे में ढेर सारी, लेकिन हो जाए इससे पहले इनके ही फिल्मों से गीत। एंजॉय कीजिए।

जवान जान मां हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवान। दोस्तों परवीन बाबी का मॉडलिंग कैरियर जो है 1972 में शुरू हुआ और जल्द ही उन्हें क्रिकेटर सलीम दुरानी के साथ चरित्र नामक एक फिल्म में फिल्म करने का मौका भी मिला जो कि 1973 में आई। हालांकि ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म रही। परवीन बाबी को इसके बाद कई फिल्में करने का प्रस्ताव मिले। उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म जो थी वो अमिताभ बच्चन के साथ मजबूर जो कि 1974 में थी वो थी। जिना तामन के साथ परवीन बाबी भारतीय फिल्म नायिका की छवि को बदलने में मदद की। वो जुलाई 1976 उस समय के टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर प्रदर्शित करने वाली पहली बॉलीवुड स्टार थी। अपने कैरियर के दौरान वो एक गंभीर अभिनेत्री की तुलना में एक ग्लैमरस हीरोइन के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुई थी। जी हाँ, एक फैशन आइकॉन के रूप में भी जानी जाती थी परवीन बाबी। और मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा कहते हैं कि परवीन बाबी फैशन में आधुनिकता लाई। वो हमेशा खूबसूरत रहती थी। परवीन बाबी, हेमा मालिनी, रेखा, जिनतामन, जया बच्चन, रीना राय और राखी के साथ उस युग की सबसे सफल अभिनेत्री में से मानी जाती थी। अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्मों में अभिनय किया जो सुपर डुपर हिट हुए। वो शशि कपूर के साथ सुहाग, काला पत्थर, नमक हलाल में अभिनय की। धर्मेंद्र के साथ जानी दोस्त, फिरोज खान के साथ काला सोना, जी हाँ, और मार्क जुबेर के साथ दूसरी औरत की भूमिका निभाई। विनोद पांडे के साथ नजदीकियां जैसी फिल्में भी उन्होंने की। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम और उनकी फिल्मों के बारे में बात करें तो

सुपर डुपर फिल्म शान, नमक हलाल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ऐसे फिल्मों में इन्होंने काम किया, क्रांति जैसी फिल्मों में इन्होंने भूमिकाएं निभाएंगी। बातें करेंगे परवीन बाबी के बारे में और भी, लेकिन हो जाए उनके ही फिल्म से गीत। एंजॉय कीजिए।

अमर अकबर एंथोनी दीवार जैसे फिल्मों में काम किया, और अमर अकबर एंथोनी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही काला पत्थर, मैंने कहा ही है पहले ही, और जो है नमक हलाल जैसे फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो इनको जो है इनका नाम जो है बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार जैसे डेनी डेंजोग्पा, कबीर बेदी के साथ खूब जो जोड़ी जो है इनकी प्रेम कहानी जो है बहुत चर्चित रही, और बाद में जो है महेश भट्ट के साथ इनका जो है बहुत ही खास एक रिश्ता रहा, और उतार चढ़ाव जैसे रिलेशनशिप रहे, क्योंकि महेश भट्ट शादीशुदा थे और इनको महेश भट्ट ने अपनाया नहीं। जी हाँ, और भी अगर हम इनके फिल्मों के बारे में बात करें तो रंगीला, रतन, बुलेट, चोर सिपाही, चांदी सोना, मस्तान दादा, दरिंदा, आहुति, पति पत्नी और वो, अब्दुल्ला, जी हाँ, उसके बाद जो है दो और दो पांच, द बर्निंग ट्रेन, एक गुना और सही, खून और पानी, क्रांति, मेरी आवाज सुनो, दिल आखिर दिल है ये नजदीकिया, शांति, देश प्रेमी, आहा, खुद्दार जैसे बड़ी फिल्म जो है, इसके बाद महान, ताकत, फिल्म ही फिल्म, जानी दोस्त, रजिया सुल्तान, अर्पण, चोर पुलिस, रंग बिरंगी, कर्मयुद्ध, बध और बदनाम, अमीर आदमी, गरीब आदमी, सितमगर, ब्रांड 303, अविनाश, आकर्षण जैसे फिल्में इन्होंने की। तो चलिए एक और गीत हो जाए इनके फिल्मों से।

0: दोस्तों 1983 में अचानक परवीन बाबी ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि उनको स्किज़ोफ्रेनिया हो गई थी और उनको तरह तरह के लोग दिखाई देते थे। एक बार तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दिया कि अमिताभ बच्चन इनको मारना चाहते हैं। बाद में हालांकि केस विड्रॉ हो गई, उन्होंने कहा कि उनकी भ्रम थी और ये जो है अलग रहने लगी। और इस तरह से मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने पर और अकेले रहने के कारण जो है अलग थलग खुद को कर लिया और 20 जनवरी 2005 यानी कि 2005 को उनकी घर में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। 3 दिन तक उनका शव जो है कमरे में बंद पड़ा रहा। तो ऐसी एक सितारा जो है हमारे बीच से चली गई। परवीन बाबी जहां भी है भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दे और हम इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे कार्यक्रम यानी कि आज के कलाकार कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट पे पेश किए गए इन्फॉर्मेशन और साथ ही सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल आप सभी को बता दें फ्रेंड्स कि अब से बस कुछ ही देर में यानी कि शाम के ठीक 7 बजे का वक्त रहेगा दोस्तों निशी समाचार का। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
2: Si Akazwani itaral pokuma tele porga alondi pe nan poa urum ga kanaba che reme tanmulum almera surunga nisi agum ara ngorenji greme tanga de tacho be surunga nisi puyam tap chore jabtranchi nerme akom harre pubabla राजस्थान स्टेट का जोधपुर एयरपोर्ट लो शिलो नीति ने टर्मिनल बिल्डिंग नाम में नाम हम प्रोमिस तंदम नरेंद्र मोदी ये मुको जीप को मखबल में पातो और कचिबरी एप को ला अचाम पिन कर मुको लो का सो का प्रोजेक्ट हम डेवलपर रंजन नाप को में और का रीजनल गुदा थीलो उराफिलेंट का जारगो थी हम अलग मुलुक निलुक जेतु को बंदर में मोदी या जोधपुर लो मॉडिफाइड उदान स्कीम हम लांच मलंजिता पुकुन में खबल में पाता तो और कसिक नम रिबक मेंबर के जिनाम से सो मोकु लो सिविल एवेशन के नाम तो हम अलग रिलेन दागलन जिग रिक ला उदय देश का आम नागरिक में नम सिम रिवर में गोर गचो जिनाम बरिल कुन खबल में पाता तो अमित शाह

la agriculture ok parman welfare minister da sibra chohan bni murga nya alho ko ba go do ba sid kula so mo klo ni do us ga huluk ji la ir aka da ba mujuri ji kunam luk lok agom a ha me go japka mis pu kunam ha me pa to ok asam la arunachal ga state eni lo sib us ga er ko ba bi je ji nam ga la gari gora nam te gudu ham bitu biu la bi pa gura ke ji nam ok dudura che ke le le ba che ke luk lo alba helen kalen de ne ni gudene tuluk la alba kalen ta mot ku ka hamla ndar sa ye ministry of home affairs ga interministerial central team gudene jap ku ma khol ne pa ta do okso ke henka ka ka ji se ham he sor ka sor ji ku bolo so yu ku yara ham moje rije jinam gala nungunam po oka nyi gudga doka da ke hem moja rije jika lo alwe henge keje rike ne hem la ndamisa ya japata kumbo hem to oka asam lo sibik isi ge kei alwe bilik jinam hem distrik gudu lo hempa kapa ge rike la arunachal lo didira che ge gari gora nam te hem mego chiktum chingnam jinam gudu hem hempa kapa ge dukunam hem la mempa ta to आकाजान लोक लिखाबाले लो जुपेगला बामलो गोब घारीगोरा नाम तेग फोर्ज कुदु काम सिम बोर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने अलवे रिदरमेंदर मदुकुब तुलक तुका हमला रेबल क रोड ट्रांसपोर्ट ओक हाईवे मिनिस्टर दरम नितिन गाधिकारी ने अरुणाचल प्रदेश स्टेट ग लो मिनिस्टर दरम केंतो जिनु या चाप कुम खन मेन पातो ओक्सोको फोर्ज क कुदु काम हम बियारो ने अलवे कादर तापा लारिग पाग मोबोलो सो मोक हम चतुर मेंटोर ने gurga legab megoriga menga mogrika lasok gda lokani gte ne dom er pukorpa kornam te kham alba pupa papa modbarir kuna khamla minister jini ye chapta pukuna bakham to 2025 ni ga lu fol ga alo lu pe pe ne nan ho bilateral investment agreement ham bharat sarkar la israel sarkar buni ga sign mumishi nam ham silo gol ka sirab ga kub tulku rab ga kuna ba ok mo ke eni ga ara lo tom er ga pe de lo nin asa nam te ham alaya mod bala murli mor ko ga pe de lo alba yagluk ya ga ka sa ham alaya mod kub sok bilateral investment agreement agom sim shirab ga dukuna ba kham na ne pa tha do no shin shi pu shi ma khazbani etan pu kum lok ka thal do nya do rego da go ham kai na nam te lo rego da ga khuna journalist ge di si rego meng go ham tege alba rigrik la alba henka ka ka la rego meng ji de khub ria to ka ham la भारत मोग वाइस प्रेसिडेंट नर्म सीपी राधा कृष्णन ये जाप कुम खम में पातो ओक मोर्ग निया आलहो नितने देली लो होता बुग लगा बसो बुबुलग अचाम पीर नन पांदेशन दे आलोहम मनाग कलो नर्म राधा कृष्णन ये आगम जाप के ना रेद कुला सो पुई पोता नी गिर है आगम आहम अलब जाप गग ला पब्लिक लगा ब अलब जाप का ब का मिसे मुकु बोलो डेमोक्रेसी नाम ते सिम अलब सीलन गलन गनम नाम ते ब रिद कुन खम ला जाप कने ब खम तो ऑक्सोक थायो लो नर्मा राधा कृष्णन ये किताब देवनी गो हिंदू डिस्कोर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस ओक टेम्पल्स बियॉन्ड भारत में नाम खम तोरलेन जिता पुकुन में खम में पा था तो एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर तेजपुर आरा लोक वन अरुणाचल प्रदेश बोटेलियन नेशनल कॉडेट कोर्स फाइनल कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप कम युवा आपदा मित्रा स्कीम प्रोग्राम 2026-27 हम मोर्ग या अलहो ईटानगर ग राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लो रिजुब गगे कुबा खम में पातो ओक वन अरुणाचल प्रदेश बोटोलियन एनसीसी ग कमांडिंग ऑफिसर आरा लोक अलोलूर गोब सोक कैंप हम रिकोक लो चिमरी एन चैंप गोला कन एनसीसी कॉडेट से गृह रेपादाकवा न्याप कुम हम में पाता दो Ministry of Home Affairs ga lekakan nane National Water Award menam Rashtriya Puraskar Portal menam kham Ministry of Jal Shakti ha launch mulanjip kumakhal men pato oksok lega ba application kham online Rashtriya Puraskar Portal lo sok arne ga show por ga alochem ni gola lipi nan tol go ba jilik tukka kham na japaga tukuna ba kham to केले ग की पान्योर डिस्ट्रिक्ट ग पोशा नाम पोम लो सिविक इस ग मेगो बीजे जिन अब्लिक लो दर दबा

0: 아데 쿠바 이스테디가 쿰슈 코브라 그다 므르로 야카카쿰 모세 리고 함 아루나첼 블롯 클라브 그드카 레프 가투쿠나마 오카 소카 도르다바 발르크 데크 푸쿰 함 이타네거 로라 홀롱기 루카발리 파시가 팡깅 볼링 로잉 롱든 창랑 실롱 오카 발르쿰 틀로 무투 지트 쿠라 아프쿠나마 함 멘파 타토 ओके पोसाना पोम लोक नि गद ने रि आका दोकु बसे बि सिग मुजे कुनम गद ने कादर बु तोर नाने दोकु बसोक यबिया का काकुम कुनम अबर अलार मिलि मर को हम सिस्टिन या चोली ग एमएलए नरम तोको तातुंग आला क्लो सोक तेल पोल ग आलो लिपि नन तोरो जिरिक जिर कुन हम ने पा था दो कसरुंग जिपुये हेबो
1: شی آغاز بانی ایتانو پوکو مسوا کوکو به تانگه دست سروم سروم گنجشی می منم با من دروغ آگم به تاپاره

दोस्तों आप सुन रहे थे निशी में समाचार। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे निशी श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। चलिए दोस्तों, अब आप आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों के सेगमेंट के साथ। और कहते हैं दोस्तों कि रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, एक दीवाना मुसाफिर है मेरी आंखों में, वक्त बेवक्त ठहर जाता है फिर चल पड़ता है, अपनी ताबीर के चक्कर में मेरा जागता ख्वाब रोज सूरज की तरह घर से निकल पड़ता है, रोज पत्थर की हिमायत में गजल लिखती हूँ, रोज शीशों से कई काम निकल पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, सुनवा देते हैं आपको चंद बेहतरीन नगमे, एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों आप सब सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीत जो कि बैक टू बैक आप सभी के लिए प्ले किया जा रहा है। अब से बस कुछ ही देर में हम फिर से लौट के आते हैं आप सभी का मन पसंदीदा प्रोग्राम लेकर। आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Your handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
4: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
3: एफएम बैंच के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को।

सभी के अपनों तक। दोस्तों, आज का जमाना वाकई में बहुत अलग हो चुका है। लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, हर काम जो है ऑनलाइन ही हो जाता है। जैसे कि सोशल मीडिया, जैसे कि आपका इंस्टा हुआ, टेलीग्राम हुआ, फेसबुक हुआ और ढेर सारे ऐप्स हैं, टिकटॉक वगैरह जो बाहर पे भी चलते हैं। इस तरह से रील्स के जमाने में सोशल मीडिया में लोग एक दूसरे से मिलते हैं और कभी कभार जो क्या होता है कि ऐसे ऑनलाइन फ्रेंडशिप होते होते एक रिलेशनशिप में पहुंच जाते हैं। और वाकई में बहुत लोग तो एक दूसरे से दिल से प्यार भी करते हैं लेकिन बहुत दूर दूर रहते हैं। इसे ही शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अंग्रेजी में कहते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से ही स्पष्ट हो जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लंबी दूरी वाले रिश्ते जिसमें दो प्यार करने वाले एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वालों के लोगों के बीच ठीक वैसा ही प्यार होता है जैसे दो लोगों एक शहर में रह कर करते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है जब चाहे वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते, ना ही एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे आज का जमाना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का ही ज्यादातर होते जा रहे है। दोस्तों, इस रिलेशनशिप में बहुत सारे रिश्तों में बहुत खटास आ जाती है कुछ दिनों के बाद और रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप आमतौर पर फोन, मैंने कहा ही है, ईमेल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप जैसे माध्यम से बनता भी है और बिगड़ भी जाता है और टूट भी जाता है। इसके अलावा ऐसे शादी या पार्टी या समारोह में भी मिल जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, है ना दोस्तों। और फिर जो है कुछ समय चलते हैं, लेकिन लेकिन लेकिन दोस्तों ऐसे भी नहीं है कि सभी लोग इससे कुछ दिन चलने के बाद में बंद कर देते हैं या वफादार नहीं रहते हैं। कई कई रिश्ते जो है सालों तक भी चलते हैं। बातें करेंगे आज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में, हो जाए एक बहुत ही प्यारा गीत जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। एंजॉय कीजिए।

चीटिंग, लाइंग यानी कि धोखा, झूठ बोलना, बिट्रायल, वैसे तो हर रिलेशनशिप में है। सामने आमने सामने बैठे हुए लोग ही एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, बिट्रायल कर देते हैं दोस्तों। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वाले एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, बहुत लॉयल रहेंगे, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दोस्तों जो दिल से प्यार करते हैं ना, तो इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में वो बिल्कुल धोखा नहीं देंगे, चीटिंग नहीं करना है, एक दूसरे के प्रति लॉयल रहनी है। मन में जो भी बात आए उस बात को अपने जो पेयर है यानी कि आप जिसे प्यार करते हैं उनको आप प्रकट कीजिए। हर रिश्तों के प्रति ऐसी ईमानदारी बनकर और बनाए रखने से ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वफादार और जो है टिक सकता है। क्योंकि ये फोन के उस पार है, वो फोन के उस पार है, दोनों इस पार उस पार क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता होता है। लेकिन फिर भी वफादारी जो चीज होती है यानी कि लॉयलिटी होती है, वो एक दूसरे को अगर सच में दिल से प्यार करते हैं तो रखेंगे जरूर। वैसे आज के समय जहां प्यार की परिभाषा ही बदल गई है, अब मन के प्यार के बजाय शारीरिक प्यार पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहकर व्यक्ति को प्यार की सही परिभाषा यानी कि मीनिंग समझ में आ सकती है, अपने प्यार के बारे में वो महसूस कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपको यकीन दिलानी पड़ेगी। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो आपको यकीन दिलानी पड़ेगी। किस माध्यम से? जी हाँ, फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, कि मैं तुम्हारी कितनी प्यार करता हूं या करती हूं, मैं तुमसे हर बात शेयर करती हूं, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूं। एक्चुअली में एवरी रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन लॉयलिटी, कि आप कितना लॉयल है। जी हाँ दोस्तों, यही बात तो सबसे पहले हरेक रिश्ते की बुनियाद होती है, वरना किसी भी रिश्ता जो है कभी भी टूट सकता है। और लंबी दूरी के रिलेशनशिप यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो उम्मीद पर यानी कि ट्रस्ट और यकीन पर ही टिकी हुई है, और आशा रहती है कि बहुत जल्द किसी का कॉल आएगा, मैसेज आएगा, मिलने आएंगे, और इसी इंतजार में वो इंसान शायद सुबह से लेके शाम तक एक ख्वाब सा बुनने लगता है। चलिए और बातें करेंगे इसके बारे में, लेकिन हो जाए एक और प्यार भरा गीत आप सभी के लिए। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपने रिलेशनशिप में एज अ बूस्टर की तरह डाल सकते हैं। अपने पार्टनर जो भी है या स्पेसिफिक पर्सन जो है, उनका आप बहुत ख्याल रखें, उनको एहसास दिलाएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आप उनकी कितना केयर करते हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे उनके बर्थडे, ये जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा सा गिफ्ट दे, लेकिन शायद आपका एक कॉल उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज बन सकता है। आपका वो फर्स्ट कॉल, अगर आपने वो पहला कॉल किया उनको उनको बर्थडे विश करने के लिए, शायद वो बहुत बड़ी चीज होगी उनके लिए। जी हाँ, छोटी छोटी चीजों पर आप जो है उनको एहसास दिलाइए कि आप उनको कितना चाहते हैं। और अगर मन में कोई खटास आ भी गई है, तो मन मुटाव तो चलते ही रहता है, छुटपुट झगड़े टिटबिट्स तो आपस में होते ही रहते हैं, और अगर आपस में लड़ाई नहीं हो, पॉजिटिवनेस भी अगर नहीं हो, तो वो फिर प्यार ही नहीं है, वो तो फिर बिजनेस हो गया दोस्तों। जी हाँ, बहुत लोग कहते हैं अरे तुम तो इतना बोलती हो, तुम तो इतना बोलते हो। प्यार में पॉजिटिवनेस होना बेहद ज्यादा जरूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर वो पॉसेसिवनेस नहीं है, फिर वो प्यार नहीं है, वो एक बिजनेस है, एक समझौता है जो आपने ऐसे ही बेकार में ही कर दिया किसी के साथ। जी हाँ, तो छोटी छोटी बातों पर अगर लड़ाई अभी होती है, तो भी जो है एक दूसरे को सॉरी कह के मना लीजिए। यार क्या है, प्यार के लिए तो कुछ भी करने के लिए, लैला मजनू के जमाने को देखिए, कुछ भी कर जाते थे। आजकल तो यहां प्यार हुआ, आज प्यार हुआ, कल इजहार हुआ, उसके बाद में तकरार हुआ, और फिर जो है खत्म हुआ। यही है, तो अपने रिलेशनशिप को बूस्टर डोज दीजिए, प्यार दीजिए, समय दीजिए, इग्नोर मत कीजिए प्लीज। ये इग्नोरेंस जो है ना, वो बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं, स्पेशली लड़कियों के बारे में मैं बोल रही हूं। लड़कियां जो है लड़कों से ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो उन का जो मेंटेलिटी होता है, लड़कियों का जो एक थिंकिंग का जो वे होता है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो मैं तो जन से यही कहूंगी कि आप उनका रिस्पेक्ट कीजिए कि वो आपके लिए इमोशनल रहती है, आपके लिए टाइम निकालती है, वरना किसको पड़ी है किसकी दोस्तों, है ना? तो इतना टाइम किसी के पास भी बिल्कुल नहीं है, सभी अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। तो अगर कोई बात बिगड़ भी जाए तो मना लीजिए, और अपने डिस्टेंस रिलेशन को मुकम्मल करके आगे लेके जाइए। जी हाँ, ऑल द बेस्ट कहते हुए मैं इस खूबसूरत गीत के साथ ही अपना ये सेगमेंट जो है यही पर संपन्न करूंगी। रात्रि के ठीक 8 बजे का वक्त रहेगा वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप का। आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट में। भले ही ये भूले बिसरे गीतों का कारवा क्यों ना हो, लेकिन ये हमेशा सदा हमारे होठों पर विराजमान रहता है। और जी हाँ दोस्तों, इसे गुनगुनाना हम बेहद पसंद करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, शुरू कर देते हैं हम अपनी जो है इस गीतों के कारवा को, बस केवल आप सभी के लिए। वो कहते हैं ना कि तड़प है वो मेरे इस धड़कन का, मगर अफसोस उसे क्या खबर मेरे इस तड़पन का। अक्सर दिल के आईने में देखा करते हैं उसकी तस्वीर को, अक्सर दिल के आईने में देखा करते हैं उसकी तस्वीर को, मगर उसे क्या खबर मेरे दर्पण का। हमने तो सांसों की पंखुड़ियां डाल दी थी उनके कदमों में, हमने तो सांसों की पंखुड़ियां डाल दी थी उनके कदमों में, मगर अफसोस उस संग दिल को क्या खबर मेरे इस अर्पण का। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए इंतजार में, बिल्कुल।

जरूर कोई तो लिखता होगा कागज और पत्थर का नसीब, वरना ये मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, और कोई कागज की रद्दी और कोई कागज गीता कुरान और बाइबल बन जाए। चलिए एक और प्यार भरा गीत आप सभी के लिए एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हां दोस्तों, भुले बिसरे गीतों के सेगमेंट में अगला नजराना एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों, जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बस एक पल की लगती तो है, लेकिन उनकी यादें उम्र भर साथ रहती है। कभी कभी मिलने का कोई खास कारण नहीं होता, फिर भी दिल बार बार उसी चेहरे की ओर खींचा चला जाता है। ऐसे ही प्यारे एहसास को खूबसूरती से बयां करता हुआ ये आखिरी गीत जो है आप सभी के लिए पेशे खिदमत कर रही हूं। जी हाँ, भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट में एंजॉय कीजिए।
1: जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

दोस्तों, फिल्म खानदान के इस खूबसूरत से गीत के साथ ही हमारी आज की भूले बिसरे गीतों का यह सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे आज के इस सेगमेंट पे पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। एफएम बैंड की 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों चलते चलते अब वक्त हो चला है कि हम आप सभी से अलविदा कहे। हम ये उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि हमारे आज के इस तीसरे प्रसाद सेवा में पेश किए गए सभी कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इन्हीं तरह के तमाम ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों को लेकर हम आप सभी के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे कल सुबह के ठीक 5:48 पर। कल का सवेरा आपके जिंदगी में ढेर सारे खुशियां लेकर आए। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और जी हाँ दोस्तों, आप अपना भरपूर ख्याल जरूर रखिएगा और

अरुण एफएम पर यू ही प्यार बरसाते रहिएगा, हमें सुनते रहिएगा। और चलते चलते हम यही कहेंगे कि होके मायूस ना, यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरेंगे एक पाँव पर तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी मंगलमय कामना करते हुए संचरण निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता होली राम ब्रह्मो तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी के अपनी आरजे अपर्णा को रुखसत होने के दीजिए इजाजत, और आगे के कार्यक्रमों के लिए बने रहे एफएम गोल्ड चैनल पर। आपका आने वाला पल मंगलमय हो। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।

ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। नमस्कार, सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर सायाज ही याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
1: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ माचलिष्ट सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज वृक्ष नियम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट।

0: भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
1: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई।
0: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
1: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
0: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख ना जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
1: और वो प्रश्न मैं हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
1: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
0: कालिदास उज्जैनी पहुंचते हैं, वहां उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर

0: होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहाँ आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
1: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
2: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो।
3: मेघ, मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है, सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
4: 31 जुलाई को महान कथाकार, साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है, हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद, कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
5: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष

0: विश्व में ज्यादा चर्चित होती हैं, समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं,
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं अगर
0: इजाफा
1: आप उसको।
0: करती हैं।
1: मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
0: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं, और बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था, और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थीं जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़ कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है, और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया, और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है, और फिर उसकी जो रोमांच का वर्णन करते हैं, पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं, तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी, आप जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें भी आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है जिसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें तो रामलीला कहानी है। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही, अच्छा शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है, और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हु करते दौड़ता हूँ तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था, और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उन पर बुंदियां चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था, और जब राम का सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे, और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है, तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है, और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में है और बड़े कड़क आदमी है, तो इससे भी वो मांगती है कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इनसे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के अशर्फ भी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो हैं वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है, तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना। रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है। तो

0: लोग क्या करें, कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहां बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे, लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए, और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहां तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा के केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहु पठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं भी, जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ। वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं, वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, और इसमें एक नाम है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है, बोल नहीं सकता जो उसका भी

0: दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
1: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी चार लाइनें सुना सकता हूँ और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंद भी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है, निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्य कृति लिखी और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हाँ भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभनी सुरसरी स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक प्रभावित थे, उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूँ, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मिरथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50, 60, 70, 80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, शानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण दे करके जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, ये वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था

0: वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत के उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमाशंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर विकसित नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास की आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। तेहरान के दिवंगत नेता

0: को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 बजे से पराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 मैच में 191 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 13 ओवर में 4 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Margo. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini India, where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year. Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets, including the United States, Japan, and Europe. Earlier, upon reaching Sanand, the Prime Minister toured the high-tech plant and inspected the production process. He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility. Addressing the program in Balotra district in Gujarat, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources. Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Defense Minister Rajnath Singh today highlighted India's significant progress in manufacturing and technology, saying the country's defense exports have reached a record of over 38,000 crore rupees. Addressing an event organized by a private media organization in New Delhi, Mr. Singh said the sharp rise from 686 crore rupees in the financial year 2013-14 reflects an almost 57-fold increase and underlines the growing global confidence in Make in India defense platforms.
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है।
4: टुडे

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं किरण शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की जनता को उनकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में शुरू हुआ। डीआर कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के अंतर्गत सेवारत भारतीय सेना के 651 जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। और फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात टेक्सास के ह्यूस्टन में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने तथा निवेश का एक सुरक्षित अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा है कि ये समझौता निवेशकों के निवेश की सुरक्षा के मामले में मजबूत होने के साथ साथ वैध सार्वजनिक नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप संप्रभु नीतिगत स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए पर्याप्त लचीला भी है। BIA अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून के आधुनिक सिद्धांतों और विकसित होते न्यायशास्त्र को भी दर्शाता है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत और इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अगले 250 वर्ष अमेरिका के लिए और अधिक

0: साल 9 साल पहले तक हमारा यह डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोयो सुबियांतो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जकार्ता के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की ये चौथी यात्रा है। मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्तर तक पहुंचने के बाद ये उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसाला में अयतुल्ला सैयद अली खामेनेई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित लोगों में राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गलीबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। बिहार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेडिटा ने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी और कई देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल थे। इसराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में 28 फरवरी को खामेनेई के मारे जाने के बाद अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 9 जुलाई को पवित्र शहर मशहद में दफनाए जाने से पहले अगले कुछ दिनों तक अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जारी रहेगा। उसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक का पालन किया जाएगा। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC के स्थायी परिचालन ठिकाने साके में आयोजित एक औपचारिक पदक परेड के दौरान संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। ये पदक कल आयोजित एक समारोह में प्रदान किए गए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के तहत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन मोनुस्को के वरिष्ठ अधिकारी, बल मुख्यालय के प्रतिनिधि, सैन्य कमांडर और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। फ्रांस में 1947 के बाद से जून अब तक सबसे गर्म महीना रहा है। सरकारी मौसम एजेंसी के अनुसार जून में औसत तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रहा। भीषण लू से तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से 24 और 25 जून अब तक के सबसे गर्म दिन रहे। पहली बार फ्रांस में राष्ट्रीय स्तर पर औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। फीफा विश्व कप में प्री क्वार्टर फाइनल के पहले मैच में आज रात 10:30 टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को और मोरक्को ने नीदरलैंड्स को हराकर इस राउंड में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में देर रात 2:30 पर पराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। भारत के लिए ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की जनता को उनकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में शुरू। डीआर कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति